के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हे गाइस व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जाने और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है शादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है, ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: राम राम, दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नाजीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल। आज मेरी बातों में आपको कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही होगी, एक एनर्जी नजर आ रही होगी। उसके पीछे एक वजह है, खास वजह ये है कि बहुत ही खूबसूरत रेसलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा मूवमेंट कम होता है और यही एक वजह है कि मैं बहुत खुश हूं। और बहुत अच्छी टैलेंटेड रेसलर है हमारे बीच में, हमारे साथ है आरती त्रिवेदी। तो आरती त्रिवेदी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू सो मच सर।
4: लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ब्लैक बेल्ट रह चुकी हैं और ब्यूटी पेजेंट और साथ ही साथ लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं और 2021 में आप फर्स्ट रनर अप रही हैं। सो आपका एक बार पूरा बहुत बहुत स्वागत। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि एक ब्लैक बेल्ट के साथ इतनी सारी खूबियां होती हैं। सो आरती, कैसा फील कर रही है आज स्टूडियो में आकर, कैंपस में आकर?
6: सर, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड।
4: ओह, रियली नाइस। मुझे भी आपसे बात करके थोड़ी सी खुशी हो रही है, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था जब मैंने सुना कि कोई ब्लैक बेल्ट आ रहा है। लेकिन जब आपसे मेरी मुलाकात हुई और जब मैंने आपके बारे में जाना तो मुझे लगा कि हाँ, आप अच्छी बातचीत हो सकती है आपके बारे में। तो ये जो आज आपका यहाँ आना हुआ है कैंपस में, जिस शूट के लिए आप लोग आए हैं, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि इससे कैसे जुड़ना हुआ, इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के साथ आप लोग चल रहे हैं?
6: एक्चुअली ये फाउंडेशन ग्रुप है, लॉ ग्लोबल फाउंडेशन, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है लेडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के बीच में बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं जिन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, और जो हम लोग थोड़ा सा अवेयर हैं तो हम उन गर्ल्स को, लेडीज को अवेयर कर सकें, और जो मींस लो मिडिल क्लास है उनको सपोर्ट कर सकें।
4: जी जी जी, वाकई बहुत अच्छे, एक यूं कहें कि सोसाइटी के काम से आप जुड़ी हुई हैं और लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है, खासकर महिलाओं को, तो आप आगे आएं, उस परेशानी को आप ना छुपाएं, डॉक्टर से सलाह मशवरा करेंगे तो निश्चित तौर पर उस बीमारी का वक्त रहते हुए इलाज हो पाएगा। अब आपके बारे में बात करते हैं कि कब लगा कि हाँ, मुझे इस फील्ड में आना है, फाइट करनी है, रेसलर बनना है, ब्लैक बेल्ट हासिल करनी है, कब लगा आपको?
6: नहीं सर, एक्चुअली क्या होता ना, जब हम छोटे होते तो हर बच्चे को ऐसा लगता है मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ये करना है, बट मुझे ऐसा लगता था स्पोर्ट्स हो बट इंडिविजुअल हो, कि हाँ खेला है तो सिर्फ आरती ने खेला है, जीती है तो सिर्फ आरती जीती है, तो जस्ट चूज ऑफ कि मैं कराटे खेलूंगी।
4: ग्रेट ग्रेट। कराटे के बारे में जब जिक्र हो ही गया है तो आपने मुझे बताया था कि स्कूल लेवल पर आप जा चुकी हैं, नेशनल भी आपने रिप्रेजेंट किया है, तो वो जो माहौल रहा वो कैसा माहौल रहा, कितनी खुशी मिली उस वक्त आपको, कैसा लगा?
6: बहुत खुशी मिलती थी जब हम लोग जीत कर आते थे तो हमसे ज्यादा हमारे फादर्स को लगता था वाओ मेरी बेटी का फ्रंट पेज पे फोटो है,
4: really nice.
6: नाम है, तो जस्ट वो खुशी बहुत अनबिलीवेबल होती है,
4: बयान नहीं किया जा सकता
6: एग्जैक्टली। और जब आपकी फाइट को देख के बॉयज बोले ऐसे खेलना चाहिए,
4: एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आरती यहाँ पर अगर आप कहें तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और जो बातों का सिलसिला है लिसनर्स लगातार जारी है, कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जब आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ ये गाना सुनना चाहती हूँ, लिसनर्स को सुनाना चाहती हूँ,
6: पल पल दिल के पास,
4: पल पल दिल के पास, मेरे भी पल पल दिल के पास आरती बैठी हुई है फिलहाल। ये ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर ब्यूटीफुल लिसनर्स सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 एफएम पर। सो लिसनर्स आप कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनोशादा 90.8 एफएम। मेरे साथ बैठी हुई है ब्लैक बेल्ट ब्यूटी पेजेंट, लो ग्लोबल फाउंडेशन की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, फर्स्ट रनर अप रही हैं 2021 में आरती त्रिवेदी। ये ब्यूटीफुल गाना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 एफएम पर।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ, और मेरे साथ आज खास मेहमान है ब्लैक बेल्ट, जिनको मिल चुकी है ब्यूटी पेजेंट, लोग ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021, आरती त्रिवेदी। वेलकम बैक।
1: थैंक यू सर।
0: कैसा लगा गाना आपको ये?
1: बहुत अच्छा।
0: देखिए, जब खूबसूरत गाने हम सुनते हैं और पुराने दौर में हम चले जाते हैं, गानों के एक मायने हैं, वर्ड्स की एक मीनिंग है, और खासकर जब उसमें म्यूजिक अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं टेंशन दूर हो जाती है। आरती, जब म्यूजिक का जिक्र हो ही चुका है, तो जब आपको लगता है कि आज मैं बहुत उदास हूँ या परेशान हूँ, तो म्यूजिक आपकी जिंदगी में कितना दखल करता है?
1: 99%।
0: तो सही सवाल किया मैंने आपसे।
1: एग्जैक्टली, मतलब आपका मूड बता देता है कि आपका मूड अच्छा है, मिडिल है, या बिल्कुल खराब है।
0: तो इसलिए म्यूजिक बहुत रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी में।
1: हाँ जी।
0: आप मुझे ये बताइए कि घर से कितना सपोर्ट आपको मिला जब आप इस फील्ड में आ रही थी, चाहे वो ब्लैक बेल्ट की बात हो या ब्यूटी के क्षेत्र में आने की बात हो।
1: एक्चुअली छोटे थे, मदर नहीं को ऐसा लगता था कराते खेलेगी लग जाएगी, बट फादर नहीं कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है।
0: जी।
1: उसके बाद में मदर भी बहुत एग्री हो गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं गई। मदर, ब्रदर,
0: सभी ने सपोर्ट किया,
1: सपोर्ट रहा,
0: कहीं से कोई विरोध नहीं हुआ, कहीं से किसी ने रोका नहीं आपको, हमेशा ही पुशअप किया कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
1: हाँ सर, एक्चुअली फैमिली से सपोर्ट हुआ बट ससुराल से नहीं हुआ।
0: ओके ओके,
1: ऑब्वियस सी बात है।
0: हाँ, हाँ।
1: और इतने क्रैशेस बढ़ गए कि डाइवोर्स हो गया।
0: ओ माय गॉड, सॉरी, मैं आपकी बातों को छेड़ दिया।
1: नहीं,
0: मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि जो आपका ख्वाब है वो ख्वाब आपका हकीकत में तब्दील हो, आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने ख्वाबों को संजो के रखे हैं, पाल कर रखे हैं, अदरवाइज तो इंसान कहीं ना कहीं चार दीवारी में घुटकर वहीं दम तोड़ देता है।
1: एग्जैक्टली, हम तभी कुछ करने निकलते हैं जब हमको लगता है कि हम उस चीज के लिए कैपेबल हैं।
0: जी जी।
1: और जिन लोगों का माइंडसेट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे लोगों को तो पता चलना ही चाहिए ना कि वो आज के रिकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं।
0: सॉरी, मैंने आपके घर की बात छेड़ दिया, यूं कहें कि बातों बातों में वो बात आ ही गई। अच्छा, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं। मुझे ये बताइए कि घर वालों को या दीदी को या भाई को लगता है कि कहीं झगड़ा हो गया तो हम आरती को आगे कर देंगे, हमारी दीदी रेसलर है, हमारी दीदी भैया ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, कभी कुछ होता है ऐसा?
1: नहीं, एक्चुअली बचपन में हुआ था, मेरे ब्रदर को किसी ने मार दिया। आया, दीदी मुझे मार दिया, मैंने क्या अभी बताती हूँ, उसको बड़ा मार गया।
0: अच्छा, लिटरली? ओह माय गॉड।
1: एग्जैक्टली।
0: देखिए, मैं पहले तो डरा हुआ था, लेकिन जब मैंने आपका स्वभाव देखा कि हाँ, इंटरव्यू अच्छा जाने वाला है, अदरवाइज लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होती, और जब मुस्कान नहीं होती तो फिर ऐसा लगता है कि भैया कुछ बातचीत करने में मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। सो फाइनली, क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, रेसलर बनना चाहते हैं, ब्लैक बेल्ट हासिल करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा?
1: संदेश ये कि हम कुछ भी करें, मतलब वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, ब्यूटी फील्ड हो, या स्टडी फील्ड हो, जो भी करें, हम अपना 100% दें, तो 100% रिजल्ट्स हमको डेफिनेटली मिलेगा।
0: वाओ, ग्रेट ग्रेट। ये लिस्टर्स सीखने समझने वाली बात है कि अगर आप जिस फील्ड में हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाने के लिए निश्चित तौर पर मेहनत करिए, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती। सो लिस्टर्स, आप हमारे साथ जुड़ी रही, आप थी आरती त्रिवेदी, ब्लैक बेल्ट, ब्यूटी पेजेंट, लोग ग्लोबल फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट रनर अप 2021 आरती त्रिवेदी। आपने हमें जो समय दिया, हमसे जो बात की, उस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: थैंक यू सो मच सर, मुझे भी मिलके आपसे बहुत
0: सेम हियर, आई हाय, मजा आ गया। सो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताइएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वो गाने की बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, मैं समझता हूँ कि इससे जो लौ जलाई जाती है वो लौ जिंदगी भर जलती रहती है, वो लौ कभी बुझती ही नहीं है। जी हाँ, ऐसे एक शिक्षक आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं, ममता बांकुरे जी, जो कि एक पेशे से शिक्षक हैं। और कहा जाता है कि अच्छा गुरु अगर आपके पास है तो जिंदगी आपकी संवर जाती है, क्योंकि मेरी माँ खुद शिक्षिका रही हैं, तो उन बातों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, समझा है। साथ ही साथ आप ला फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और इसकी आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ममता जी, सुनो शारदा 90.8 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: जो बात मैंने रखी है शुरुआत में, शिक्षक का जो एक रोल है, जो उसकी भूमिका है स्टूडेंट्स को सजाने की, संवारने की, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बट शिक्षक अकेला एक बच्चे को नहीं संवार सकता। एक बच्चा जब हम संवारते हैं तो वो एक ट्रायंगल ट्री बन जाता है। ट्रायंगल, उसके तीन कॉर्नर्स होते हैं। एक सबसे पहला उसके घर होता है, घर का एनवायरनमेंट होता है।
0: वेरी गुड।
1: दूसरा उसका स्कूल, एंड तीसरा जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं। उसमें स्टूडेंट बीच में होते हैं और उसमें सबको बैलेंस बना के चले तो एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट समाज को, एक अच्छा स्टूडेंट हमें मिलता है।
0: जी जी, आपने बात वो कह दी कि जो अक्सर हमने सुना है, सुनते आ रहे हैं कि घर प्राथमिक पाठशाला होता है। जाहिर सी बात है कि आप जो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन जो बच्चा घर से सीखता समझता है वो भी एक अपना रोल अदा करता है। आजकल का जो हम समय देखते हैं ममता जी, कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो दोनों का सम्मान हम पहले देखा करते थे, अध्यापक का बच्चे के प्रति, बच्चे का अध्यापक के प्रति, वो जो सम्मान है कहीं ना कहीं आपको लगा है कि घटा है या कम हुआ?
1: हाँ, वो कहीं ना कहीं तो उस पे फर्क पड़ा है, बट जो बच्चे का और टीचर का, गुरु के बीच का जो रिश्ता है, मुझे लगता है कि वो आज भी वैसा ही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बच्चे और टीचर, गुरु पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट द थिंग इज दैट कि बच्चे जो हैं, एक्चुअली बच्चे होते हैं इनोसेंट, उनको अपना बारे में खुद इतना नहीं पता होता जितना वो उनके गुरु पे रिलाई करते हैं। वो एक बार को अपने माँ बाप से ज्यादा अपने गुरु पे रिलाई करते हैं। गुरु का मतलब उनको महत्व उनकी नजरों में बहुत ज्यादा होता है, बट वो जो रिलेशन है वो आज भी काफी हद तक काफी वो है। बट द थिंग है, जो समाज का जो सामाजिक बदलते परिवेश है, मतलब जो प्रेशर है, उससे थोड़ा कहीं ना कहीं असर पड़ा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कितना आप मानती कि जो एक वेस्टर्न कल्चर है, हिंदुस्तान की सभ्यता तो ऐसी रही नहीं है, और जब वहां से जो कल्चर आता है, आज का समय तो ये कि वो घुसता चला जाता है और हम उसके आदी होते चले जाते हैं, तो इस संबंध में भी आप क्या कहना चाहेंगे कि पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर कितना हावी हो रही है?
1: पश्चिमी सभ्यता का जरूरत से ज्यादा हावी हो रही है, और उसका जो कारण है हम स्वयं ही है। एक्चुअली हम माता पिता के रूप में अपने बच्चे को चाहते कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। वो जो टेक्निक्स का जो टेक्निकल नॉलेज है, बट उस चीज में हम भूल जाते हैं उसको संस्कार।
0: क्या
1: संस्कार।
0: बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं इस बात पर आने वाला था ममता जी, क्योंकि आज के समय में हम यही देख रहे हैं कि हम अदब, संस्कार और सत्कार सब भूलते जा रहे हैं। आप छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा और आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। एक चरण स्पर्श हुआ करता था, आज के समय में घुटना स्पर्श रह गया है, कोई झुकना तक नहीं जाता और कोई किसी का अदब भी नहीं करता। यूं कहें कि शिक्षक और शिष्य की जो बात है वो तो आप छोड़िए, घर में भी अदब नहीं रहा। तो ये जो चीजें अगर आ रही हैं और इस तरीके से हम जो दूसरी चीजें उसमें अगर यूं कहें कि संलिप्त तो होते चले गए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो संस्कृति, अपना जो अस्तित्व है, उसका कहीं लुप्त ना हो जाए।
1: है, अगर हम देखें तो एक तरीके से विलुप्ति होता जा रहा है। जी जी। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का कहीं सिर्फ एक दिखावा सा रह गया है। कि अगर हम सोचो देखें तो मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि पूजा कर रहे हैं बट दिमाग कहीं और है। मतलब दिस एंड दैट, मोबाइल एक ऐसा हो गया है कि वो मोबाइल ने हम सबको इतना मोबाइल बना दिया कि वी कीप ऑन मूविंग।
0: यस यस,
1: सो दैट इज द थिंग, नीड स्टेबिलिटी समवेयर।
0: हां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम एक बच्चा दूसरे कमरे में बैठा है, वो मम्मी को आवाज नहीं दे रहा, सिर्फ वो टैक्स कर रहा है, शायद उसको पता है कि मम्मी भी ऑनलाइन ही होंगे।
1: या इट हैपेंस।
0: क्या कहना चाहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो ऑनलाइन एजुकेशन है और ऑफलाइन क्लासेस, इसके संबंध में जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे?
1: एक्चुअली जिसका ये जो एजुकेशन सिस्टम का जो तालमेल गड़बड़ाया हुआ है थोड़ा सा, मतलब कि इट्स लाइक दैट कि वी लैक कहीं ना कहीं बहुत सारा जो कम्युनिकेशन, बहुत सारी जो फैसिलिटी, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है वो शिक्षिका का जो स्तर है वो डिवाइडेड है, मतलब उसमें हम एक साथ नहीं, जो शहर में, मतलब जो शहर है वहां पर ज्यादा सुविधाएं हैं, जो गांव है, और सबसे बड़ी बात जो प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एंड सी हमारा जो भारत है उसकी ज्यादातर जो
0: गांव में बसते हैं
1: वहां पे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है शिक्षा को लेकर। सबसे पहले वो जागरूकता, क्योंकि अभी तक शिक्षा इतना, आज की डेट में शिक्षा इतना ज्यादा मतलब एक्सपेंड हो चुका है कि आप देखिएगा उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, लेकिन अगर अभी किसी से पूछो तो हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, दे आर स्टिक ऑन दैट। सो दैट इज समथिंग, इट हैज टू बी अवेयर, ब्रिंग द अवेयरनेस इन द विलेजेस एंड दैट, एंड आई थिंक दैट हैज बीन, आई एम सिलेक्टेड फॉर दैट।
0: आपसे बात करके ममता जी अच्छा लग रहा है, और वाकई जो बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि वो उन बातों को जानेंगे, समझेंगे, अमल में भी लेकर आएंगे। संस्कार और जो गुरु की बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, उनको अगर आप साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं यूथ को, स्टूडेंट्स को, तो वो संदेश आपकी तरफ से क्या होगा?
1: मैं तो यूथ को और उनके पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहती हूँ, और वो संदेश ये है कि जो आपका बच्चा चाहता है, आप बच्चे को समझिए और उसको वो करने दीजिएगा जिस फील्ड में, क्योंकि आपके बच्चे को आपसे ज्यादा ज्ञान है अपने बारे में, तो उसको पता है कि वो कहाँ अपना अच्छा दे सकता है। हमें प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमें बेटा तू इंजीनियर बन या तू डॉक्टर बन, बिकॉज बहुत सारी चीजें देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों के सपने ना, मतलब वो सपने ही बन के रह जाते हैं बिकॉज उनके माँ बाप कुछ बाउंडेशन लगा देते हैं, दैट इज की फॉर देम द फैशन। अब देखिएगा हरनाथ सिंह ने कितना मतलब भारत का नाम किया है, बट शी बिलोंग्स टू अ स्मॉल प्लेस,
0: एग्जैक्टली,
1: बट स्टिल देर आर दिस इज द सोसाइटी, सोसाइटी इज लाइक दैट ना, कि इन स्मॉल सिटीज एंड ऑल द पेरेंट्स डोंट अलाउ कि नहीं अभी नहीं, दिस इज नॉट फॉर यू, यू गो फॉर दैट, so that should be stopped.
0: Okay, so listeners, इस बात को अगर मैं conclude करूँ तो बात का सार यही है कि जो आपके सपने हैं वो आपके अपने हैं। कहने का मतलब यही है कि सपना देखिए, उसके साथ साथ मेहनत करिए, और साथ ही साथ जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को खुलकर आगे आने दें, उनका जो क्षेत्र है वो जो करना चाहते हैं उनको करने में आप मदद करें, तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में वो अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। सो ममता जी, आपसे बात करके मुझे वाकई बेहद खुशी हुई, आपके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छी शिक्षिका हैं, आप अच्छा काम करते रहें, और आप देश के भविष्य को आप संवार रहे, सजा रहे। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए ओरिजिनल क्रेडिट्स एल्बम हीरा पन्ना सिंगर किशोर कुमार लता मंगेशकर लिरिसिस्ट आनंद बख्शी म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन और इसी गाने को रिक्रिएट किया गया है सो लेट्स एंजॉय इट रिक्रिएशन क्रेडिट्स आर्टिस्ट दीपशिखा रैना म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग अभिषेक चलिए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है सिर्फ और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर पन्ना

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रीकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और एक ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बादल स्टूडियो क्लॉक 9:07 हो चुके हैं, 29 तारीख है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। बिल्कुल आपने सही सुना कि जनगणना यानी कि सेंसस 2027 की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत में जाहिर सी बात है कि जिनकी ड्यूटी लगी हुई है आपके द्वार आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, आपके सवालों के जवाब वो आपसे ढूंढ रहे हैं, तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लोग यहाँ तक कि उनको बैठने की कुर्सी, उनके बारे में पूछना, उनको पानी सर्व करना, ये तो महज एक इंसानियत का काम है। लेकिन इसके इतर विपरीत जब हम देखते हैं कि इस योजना में, सरकार की इस पहल में, कहीं लोग गुपचुप तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन सही देते हैं, कुछ छुपा लेते हैं या दरवाज़ा तक नहीं खोलते, ये बहुत गलत काम है। आपको सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इस योजना का निश्चित तौर पर आगे चलकर लाभ ज़रूर मिल सकता है, यानी लाभ किस रूप में मिलेगा ये तो सरकार तय करेगी, है ना। लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है कि जिस प्रकार सरकार ने या सभी दलों ने मिलकर ये घोषणा की है, तो बस आप इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। वर्ष 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है, तो साफ सफाई का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए। वर्तमान समय में गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, अगर हम कल की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कल थोड़ी राहत हमें जरूर महसूस हुई, क्योंकि कल गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसके बाद रिमझिम रुनझुन बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा खुशनुमा हो चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सोर्स शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा, तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: शिशु के 6 महीने के होने के बाद।
1: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
0: खाने में 1 चम्मच घी या तेल है जरूरी,
1: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
0: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
1: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
4: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
5: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
4: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
6: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:18 हो चुके, 29 तारीख है हमारे आसपास, और क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि मौसम का जो मिजाज बदला है, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर गर्मी के माहौल में थोड़ी सी राहत जरूर महसूस की गई है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने थी, लेकिन सच बात तो ये है कि दिक्कतें परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब आंधी तूफान बारिश बहुत ज़्यादा हो। और यूपी में ऐसा ही कुछ हुआ कि जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अफसर जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, जो अधिकारी हैं, फील्ड में निकले हैं, रिपोर्ट वहां ऑफिस में बैठकर ना लें, 24 घंटे में मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, आंधी रही, आकाशीय बिजली ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और जिसकी वजह से ये उनको एक आदेश देना पड़ा। जाहिर सी बात है, जब अधिकारी आकलन करेंगे कितना जनधन हानि हुई है, कितनी पशु हानि हुई है, कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, और उस आकलन को एक संकलन बनाकर 24 घंटे के भीतर मुआवजा देने की बात कही गई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर सबकी रक्षा करें, और हम सबका फर्ज बनता है कि हम खुद अपनी रक्षा जरूर करें, यानी कि लापरवाही ना बरतें। जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां पर हमें गड्ढा नजर नहीं आता, ऐसे कुछ हालात होते हैं हमारे आसपास। हाँ, लेकिन कुछ लोग सजग लोग होते हैं, जहां कहीं होल है, ढक्कन नहीं लगा है, तो वहां कुछ इस तरीके से निशान लगा देते हैं ताकि जो राहगीर है उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उस ढक्कन को समय से जरूर लगा कर रखें ताकि कोई बड़ी घटना दुर्घटना न घटे। ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: बिल्कुल आपने सही सुना कि आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 9:28 हो चुके, 29 तारीख हो चुकी है 29th May। वक्त हाथ से रेत की बाफ में फिसलता चला जा रहा है, इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। वक्त चलता रहता है, वक्त किसी के लिए रुकता थमता नहीं है, लेकिन वक्त के साथ चलने की हमें बहुत जरूरत है। वैश्विक पटल पर अगर हम देखें तो युद्ध के जो हालात है जिसकी वजह से एक व्यक्ति पर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है, देशों के देश पर भी फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि तमाम जो देश हैं उस पर भी कहीं ना कहीं तमाम देशों पर फर्क पड़ रहा है, एक आम जन पर भी फर्क पड़ रहा है। अब क्या फर्क पड़ रहा है हम सब जानते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार अभी बढ़े हैं, महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे समय गुजरता है यानी कि महीने की पहली तारीख जब आती है तो चेंजेस बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा LPG सिलेंडर की, यानी कि LPG के जो दाम हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि एक महीने से यानी कि जो पहली तारीख जब आएगी जून की पहली तारीख, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। और ये सब हो रहा है मिडिल ईस्ट संकट के चलते, यानी कि 14 किलोग्राम वाला घरेलू जो सिलेंडर है 913 रुपए का इस वक्त मिल रहा है, और वहीं 19 किलोग्राम वाला यानी कि जो कमर्शियल सिलेंडर है 2078 रुपए में वो सेल हो रहा है। इसके अलावा और क्या क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा, ATF की कीमत यानी कि सिलेंडर के बाद तेल कंपनियां महीने की पहली तारीख को हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल में भी बदलाव कर सकती हैं, और आने वाले दिनों में यानी कि फ्लाइट का किराया भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तीसरी बात निकलकर ये सामने आ रही है कि HDFC बैंक में भी कुछ नियम बदलेंगे, यानी कि करंट अकाउंट समेत कई जो खातों से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक की वेबसाइट पर जो मौजूद जानकारी वो ये कहती है कि पहली तारीख से छोटे नोट और सिक्कों के कैश डिपॉजिट पर नई लिमिट के साथ ही नया चार्ज लागू होगा। चौथा बदलाव होगा सोलर पैनल में, इसके बारे में भी मालूमात ले सकते हैं, लेकिन सब्सिडी दे रही है सरकार। ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ हम आगे बढ़ते हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। आए हैं

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नाम तो सुना ही होगा।
2: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे साइमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे साइमा को खुशबू के साथ।
3: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे साइमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
4: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, गम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
3: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं?
4: हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुठलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
3: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
4: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
3: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
4: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके, और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलिवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में 9:42 हो चुके हैं। 29 तारीख है, 29th May। हमारे आसपास और क्या खास उसके बारे में बात कर लेते हैं। खास बात यह कि परीक्षाओं का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन 12th की CBSE बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पेरेंट्स सब परेशान हो गए। CBSE के स्टूडेंट्स ने यानी कि जो आंकड़ा है 4 लाख छात्रों ने 11 लाख कॉपियां और री एवेल्यूएशन जो है दोबारा कॉपियां जो चेक हो रही हैं वो आज से हो रही हैं। अगर ये सब चलता रहा तो दिक्कतें परेशानी हमारे सामने बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस स्टूडेंट्स ले लेते हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए अभिभावक हैं जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। दौर शुरू ये होना चाहिए कि मुझे कॉलेज के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को दाखिला दिलाना है, कौन सी कॉलेज में प्रवेश दिलाना है। लेकिन यही अगर भागदौड़ चलती रही तो फर्क तो पड़ेगा ना। चलिए हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कहीं इस प्रकार की गड़बड़ी आने वाले समय में ना हो, क्योंकि हर एक घटना दुर्घटना अपने आप में एक सीख देती है ना। और जिस तरीके से नीट की परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ, आने वाले समय में सुनने में आ रहा है कि अब सेना यानी कि मिलिट्री उस पेपर को गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। तो खैर ये भविष्य की योजना है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एयरफोर्स के विमानों से सोचिए, है ना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। ककर रोमी अरुण एंड इका रिक्रिएटेड तनिष्क बागची लिरिक्स शब्बीर अहमद ओनली ऑन टिप्स ऑफिशियल। सो लेट्स एंजॉय इट ओनली ऑन सुरुशा द 90.8 FM।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना, पुराने दौर की कहीं ना कहीं यादें ताजा हो गई होंगी। नीलेश मिश्रा साहब ने इस गाने को लिखा है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:52 हो चुके हैं। वक्त का इशारा होता है 9:11 होने का, लेकिन अभी वक्त है तो इस वक्त को हम जीना चाहते हैं। इस वक्त में कुछ और खास इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के बाद 21 जून को होने वाली री टेस्ट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि वायुसेना यानी कि एयरफोर्स के विमानों का उपयोग करने पर विचार शुरू कर दिया गया और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में रणनीति तय की गई है, लेकिन फाइनल जो मोहर लगेगी वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अंतिम निर्णय लेंगे। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो और परीक्षाएं, मतलब यूँ समझ लीजिए कि इस तरीके से जो पेपर लीक होते हैं आगे कभी ना हो, क्योंकि वाकई समय खराब होता है, दिमाग ज़्यादा खराब होता है। चलिए और क्या अपडेट है उसके बारे में भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, कसौली शिमला पहाड़ों पर यूँ समझ लीजिए कि जंगल जल रहे हैं, लेकिन रिमझिम रुझुन जो बारिश हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा यूँ समझ लीजिए कि माहौल खुशनुमा हो चुका है। और दिल्ली एनसीआर में कई राज्यों में बादल बरसते हुए नजर आएंगे। रिकॉर्ड हमें ये बताता है कि अगले 5 साल और भी गर्म होंगे, यूएन की ये चेतावनी दी गई है। रिकॉर्ड टूटने वाले, हाँ जाहिर सी बात है, जमीन जितनी है उस पर कंस्ट्रक्शन, हाँ सही बोला, पेड़ कम लग रहे हैं, पौधे कम लग रहे हैं, हाँ पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं, और मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ हम सब समझ रहे हैं, इसको हमें सुनना होगा, समझना होगा, अलर्ट रहना होगा, अदरवाइज दिक्कतें परेशानियाँ इस तरीके से हमारे सामने यूं ही आती रहेंगी, चाहे वो बारिश के रूप में हो, आंधी के रूप में हो, तूफान के रूप में हो या किसी और भी रूप में हो।
1: रात को सोते हैं, जब सुबह उठते हैं ना तो वापस,
0: आज 29 ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ 90.8
1: नहीं आ रही है तितली।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा ओरिजिनल क्रेडिट्स एल्बम हीरा पन्ना सिंगर किशोर कुमार लता मंगेशकर लिरिसिस्ट आनंद बख्शी म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन और इसी गाने को रिक्रिएट किया गया है। सो लेट्स एंजॉय इट। रिक्रिएशन क्रेडिट्स आर्टिस्ट दीपशिखा रैना म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग अभिषेक। चलिए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना है सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। पन्ना की

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा सामुदायिक रेडियो स्टेशन और स्मार्ट मिलकर के स्वास्थ्य जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव में। यहां पर हमारे साथ में हैं डॉक्टर बेबी शर्मा। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं नवादा में और अपना क्लिनिक चलाती हैं और बहुत सारी जानकारी आज हम डॉक्टर साहिबा से लेंगे। और ख़ास करके हम जो गर्भवती महिला हैं बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे और पोषण के बारे में बात करेंगे। और ये देखा भी जाता है कि जो महिलाएँ होती हैं परिवार में परिवार की दूरी होती हैं और वो सबका ख्याल तो रखती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपना ख्याल वो नहीं रख पाती हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें ये सभी बातें आज हम डॉक्टर बेबी शर्मा जी से करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर बेबी शर्मा जी कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: थैंक यू।
0: खून की कमी की बीमारी अक्सर हम सुनते हैं देखते हैं कि महिलाओं में ये ज्यादा खासकर गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें तो ये ज्यादा ही होती है और बच्चों में भी बीमारी देखने को मिलती है, तो इसकी क्या वजह है बीमारी की और किस तरह से जो महिलाएं हैं बच्चे हैं इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं?
1: सबसे पहले तो सर जो आपने ये जागरूकता अभियान चला रखा है इसके लिए मैं आपकी बहुत ही प्रशंसा करना चाहूंगी क्योंकि आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को जागरूक करने के लिए उनको अपने हेल्थ के बारे में जागरूक करने के लिए आप ये अभियान चला रहे हो, तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मेरी तरफ से जितनी भी अच्छी जानकारी हो पाएगी मैं वो आपको जरूर देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो यही है कि खून की कमी, ये यहाँ के एरिया में तो सर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन खासकर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में। सबसे मेन जो बेसिक रीज़न है वो तो यही है सर कि पोषण की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, डाइट का और लाइफस्टाइल का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता जिसकी वजह से डे बाय डे आपका HB जो है कम होता जाता है, RBCs हैं उनकी क्वालिटी उनकी क्वांटिटी कम होती जाती है। किसी भी तरह का एनीमिया हो या तो HB कम होता है या जो आपकी RBC है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं होती, वो फंक्शन नहीं करती है ढंग से, वो भी एक एनीमिया का ही रूप होता है। तो सबसे जो मेन कारण होता है वो तो आपका यही है कि आपकी जो खान पान है उसमें पूरी तरह से लापरवाही होती है। अच्छा, दूसरा रीज़न क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हम डाइट तो अच्छी लेते हैं लेकिन फिर भी क्यों थकावट रहती है, क्यों एनीमिया रहता है। उसमें फिर हमारा दूसरा जो कंसर्न आ जाता है वो आता है सर मानसिक स्वास्थ्य के। अगर आप अच्छी डाइट लेते हो, देखिए मैं आयुर्वेद की डॉक्टर हूँ, हमारे आयुर्वेद में खाने के टाइम के भी 10-15 रूल्स हैं कि आपको इस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और किस मनस्थिति में खाना चाहिए। अगर आप क्रोध में खाओगे, अगर आप अवसाद में खाओगे, दुख में खाओगे तो आप कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो वो आपको कोई भी फायदा नहीं करेगी और डे बाय डे फिर वही किसी ना किसी रूप कमजोरी के रूप में आपका शरीर उसको दिखाएगा, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो जाए, हड्डियों में से पोषण चला जाए या फिर वो एनीमिया के रूप में आपका आएगा। तो सबसे पहला तो आपका रीज़न हो गया कि पोषण की कमी तो है ही है, आपकी डाइट सही नहीं है, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है। दूसरा है कि आपकी जो मनस्थिति है वो आपकी उसके एक्यूरेट नहीं है, जो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन होने चाहिए कि कैसे सेल्स बनती है, कैसे RBC WBC प्लेटलेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम एनीमिया से को कंट्रोल कर सकते हैं।
0: तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं डॉक्टर बेबी शर्मा जी, तो अब बात करते हैं कि जो हम एनीमिया की बात कर रहे हैं तो इसकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। मान लीजिए कोई एनीमिया का शिकार हो चुका है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, तो एक तो ये कंडीशन आ गई, दूसरे के निकट भविष्य में ये हमको ना हो, तो दोनों कंडीशनों के बारे में आपसे जानना चाहें क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं।
1: देखिए सबसे पहले तो अगर आपके आसपास कोई सुविधा है तो इस चीज के लिए सबसे पहले एक बार अपना ब्लड टेस्ट करवा लें। सबसे कॉमन जो बेसिक टेस्ट होता है वो होता है CBC, उससे एक्यूरेट ये पता चल जाता है कि आपका एनीमिया का लेवल किस लेवल तक का है। आपका जो नॉर्मल BP है फीमेल्स में अगर हम बात करें तो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनमें 13 से 17 18 ग्राम तक भी हम नॉर्मल मान के चलते हैं। तो अगर आप आसपास ऐसी कोई सुविधा है तो जरूर से एक बार अपना CBC टेस्ट करा लें ताकि एक रीजन का पता चल जाए, जब हमें रूट कॉज पता चल जाएगा तो हम उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, चलो आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसे तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको जैसा आहार विहार बताएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। दूसरी बात, जो आपको घर पे खुद ध्यान रखनी है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो या उनकी भी सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आपको खुद क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपने एक दिनचर्या बनाइए। जब तक आप एक अच्छी दिनचर्या नहीं बनाएंगे तब तक आपकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसा हम कई बार सुनते भी हैं कि अगर आप एक मटके को भरना चाहते हो तो उसमें जितने छेद है पहले उन छेद को बंद कर दीजिए, फिर डे बाई डे आपका मटका भर जाएगा। तो आपकी लाइफ में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो एनीमिया कोच कर रही हैं, पहले तो उनको दूर कर दीजिए। इसके लिए एक संतुलित आहार, संतुलित विहार, दोनों चीज़ें हम मेंशन करते हैं। हमारे आयुर्वेद में देखिए एक स्वस्थ की परिभाषा होती है, सम दोषः सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब जिसके दोष सम है, जिसकी धातु सम है, जिसकी मल क्रिया यानी जो आपके मल है, यूरिन पास आउट है, स्टूल पास आउट है, वो समय पर हो रही है, जिसकी आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न है, सिर्फ उसी को हम स्वस्थ कह सकते हैं। इसमें आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आ गया, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आ गया। तो अभी हम बात करें सिर्फ एनीमिया के बारे में, तो इसके लिए क्या करना है, एक संतुलित दिनचर्या बनानी है। आपका उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। उठने के बाद 5-10 मिनट आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस को दीजिए, शांति से बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए कि आज हमें डाइट में ये लेना है। अब घर में अगर आपके बहुत अच्छी डाइट नहीं है, देखो सब तरह की फैमिलीज होती है, बहुत अच्छा अगर आपको पोषण नहीं मिल रहा है तो घर में जो चीज़ अवेलेबल है उनको भी अगर संतुलित तरीके से खाते हैं, अगर आपके घर में दाल है, स्प्राउट्स बना सकते हो आप उनके, मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हो, अगर आपके घर में बादाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मूंगफली का भी यूज कर सकते हो। तो घर में जो चीज़ होती है उसी को संतुलित तरीके से खाकर एक समय पर, ऐसा नहीं है कि लेडीज़ क्या करती है 12-1 बजे सारा काम हो गया फिर अपना खाना खाएंगी, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सुबह 7-8 के बीच में कुछ हल्का फुल्का आपने ले लेना है। आप पैकेट फूड लाते हो उस पर इतना खर्चा करते हो, तो उन पैसों से आप कुछ हेल्दी चीज़ें भी खा सकते हो, एक सेब ला के खा लिया, एक केला ला के खा लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप घर पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप संतुलित करके अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज़ जो हम हर कोई बंदा यूज कर सकता है, एक आंवला की रसायन यूज करते हैं हम, अगर आंवला की रसायन नहीं मिल रहा है तो आंवला भी हम डेली बेस पे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हर जगह मिल जाती है। तो एक आंवले का यूज अपनी डाइट में जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई और है ऐसी शॉप तो एक पुनर्नवा मंडूर आता है, ये दो चीज़ आप विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के भी अपने आप भी ले सकते हैं। तो आंवले का यूज, पुनर्नवा मंडूर का यूज, और घर पे जितने भी आपके खाने पीने की सुविधा है, देखो फ्रूट्स में तो हम बात करते हैं अनार, गाजर, सेब, चुकंदर, मौसम के अकॉर्डिंग जो भी मौसमी फ्रूट होता है हमें उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। डाइट में जो भी आपके घर में सब्जी बनती है, रोटी बनती है, हरी सब्जियों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा। तो ये हर एक घर के शेड्यूल अलग अलग होता है खान पान का, तो आप उन्हीं संसाधनों में से अपने एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी बात, जब आप उनका बाहर का पैकेज्ड फूड बंद कर दोगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप घर का खाना शुरू कर देते हैं। कोई एक दो डेयरी प्रोडक्ट्स और घर में जो भी आपकी सब्जी रोटी बनती है, कोई हम स्पेशल मेंशन नहीं करेंगे कि आप मल्टीग्रेन खिलाओ, ज्वार खिलाओ, बाजरा खिलाओ, जो भी आपके घर की डाइट है, जो भी आपके पुराने टाइम से चलती आ रही है, वो भी अगर आप बच्चों को सही टाइम से सही भूख में दोगे तो उनसे भी एनीमिया की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आपने बताई हैं किस तरह से एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अब बात कर लेते हैं जो खासकर गर्भवती महिलाएं हैं तो वो अपने पोषण का ध्यान कैसे रखें ताकि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।
1: गर्भवती महिलाओं को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है सर, क्योंकि वो एक अगर हेल्दी बच्चे को पैदा करेंगी तो हमारा समाज, ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्यूचर बनेगा देश का वो बिल्कुल हेल्दी बनेगा। और अगर उन्होंने अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो खुद तो बीमारी से ग्रसित होंगी ही होंगी, परिवार वाले भी दुखी होंगे, साथ ही साथ बच्चा भी कुछ ना कुछ बीमारी लेके आएगा जो कि फिर माँ बाप के लिए भी बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात हो जाती है। सबसे पहले तो गर्भ का पता चलते ही आपको पहली विजिट तो डॉक्टर के पास जरूर करनी है। जैसे आप सामुदायिक केंद्र चला रहे हैं तो वहाँ पे जाके, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे चेकअप होता है वहाँ भी करवा सकते हैं। सबसे पहली विजिट तो पहले 3 महीने में हो जानी चाहिए डॉक्टर के पास। अगर बाई चांस फिर आप नहीं भी जा पा रहे हो तो कम से कम जो सरकारी जो सुविधा देती हैं, जो टैबलेट देते हैं आयरन की, कैल्शियम की, वो तो आपको टाइम टू टाइम ले ही लेनी चाहिए, लेकिन एक रूटीन चेकअप होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गर्भवती महिलाएं सबसे पहला तो क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, 1 या 2 चेकअप तो आपके पहले 3 महीने में ज़रूर से ज़रूर हो जाने चाहिए। दूसरी बात, आपको सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हम सर्दी के सीजन में हमारी हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस रहता है, गर्मियों के सीजन में हमारा वॉटरी फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है ताकि किसी तरह की डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चे में कोई कुपोषण वाली बात ना आए, बच्चे में जो पानी है गर्भ में, जो लाइकर है वो अच्छी तरह से बनता रहे। जैसे जैसे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होगा वैसे वैसे ही वो बीमारियों से बचा रहेगा। दूसरी बात, जो हम घर पे जो मेन यूज कर सकते हैं छोटी मोटी चीजें, एक भुने हुए चने आते हैं और गुड़, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसका हम हर गर्भवती महिला को जरूर से जरूर सेवन करना चाहिए। दूसरा, उसको 2 या 3 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहना है। कभी या तो मन किया कोई फ्रूट खा लिया, कभी मन किया कभी सब्जी रोटी खा ली, जो भी उसका मन करे, और डॉक्टर ने जो मेडिसिन बता रखी है वो तो लेनी ही लेनी है टाइम पे। तीसरी बात, डिहाइड्रेशन से बचना है, क्योंकि जब गर्भ पेट में होता है तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को भी पानी की ज्यादा जरूरत होती है। हमारे पास जो ज्यादा केसेज आते हैं सर, वो कुपोषण के इसीलिए आते हैं क्योंकि गर्भ में पानी खत्म हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ डे बाय डे कम होती जाती है, फिर वो ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, प्रीमैच्योर बेबी होगा। तो उससे बचने के लिए डॉक्टर से दी हुई मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा, और घर पे भी अपने स्वास्थ्य का, अपने हार विहार का अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और फिर वही मैं मेन बात फोकस करना चाहूंगी, मानसिक स्वास्थ्य पे। अगर आपका मन खुश है तो आप कम आहार में भी आप हेल्दी बच्चा कर सकते हो, लेकिन अगर मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो सर आप कितना भी अच्छा खा पी लीजिएगा वो भी आपको कोई फायदा नहीं करेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का उससे भी ज्यादा ध्यान रखना है आपको।
0: जो न्यू बॉर्न बेबी है तो

0: का कैसे ध्यान रखें, जो माता हैं या उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं?
1: देखिए, न्यूबॉर्न बेबी को सबसे पहले तो हमें उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है जॉन्डिस की। क्योंकि एकदम से बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के एनवायरमेंट में उसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए उसके जो RBCs हैं, जो ब्लड है, वो थोड़ा सा हफ्ते या 10 दिन पहले कम होता है। तो सबसे पहले तो न्यूबॉर्न बेबी को जो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जैसे सनराइज होता है, सूरज उगता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग करना है। अब सर्दियों में आप सुबह लेके मत बैठ जाइएगा, नहीं तो वो फिर सर्दी से भी ग्रसित हो सकता है। तो जब अर्ली मॉर्निंग की धूप होती है, थोड़ी सी गर्माहट वाली, 20 से 25 मिनट आपको बच्चे को वो दिखानी है जरूर से जरूर। अब ये डिपेंड कीजिएगा, आप अगर बहुत सर्दी है तो थोड़े से कपड़े भी पहना सकते हैं, और मौसम अगर अनुकूल है तो फिर उसको बिल्कुल अनकवर करके उसकी सिर्फ जो टेस्टिस और जो पेनिस होता है वो एरिया आपको कवर करके रखना है, उसकी आंखों को आपके कवर करके रखना है, और सुबह की 15-20 मिनट की आपको धूप जरूर लगवानी है। दूसरा है माँ का दूध। कई बार हो सकता है माँ की लापरवाही या कई बार डॉक्टर्स की भी कुछ लापरवाही होती है कि वो बच्चे को जो फर्स्ट 24 घंटे का दूध है वो थोड़ा अवॉइड कर देते हैं, या उनको ध्यान नहीं रहता, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पहले 24 घंटे का दूध और उसके बाद भी हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में बच्चे को माँ का दूध जरूर से जरूर पिलाना है। 6 महीने तक हमें उसको ऊपर का कोई भी आहार नहीं देना है, और जैसे ही माँ डाइट खाएगी वैसे ही उसका दूध बनेगा और वैसे ही बच्चे का पोषण होगा। तो पहले 6 महीने में हमें ये नहीं सोचना कि डिलीवरी हो गई है, अब माँ को ज़्यादा न्यूट्रिशन की, ज़्यादा पोषण की जरूरत नहीं है। आयरन, कैल्शियम पहले 6 महीने में, डिलीवरी के बाद भी माँ को लेने जरूरी होते हैं, ताकि दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे कोई भी फर्क ना आए।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, किस तरह से जो न्यूबॉर्न बेबी है उनका ध्यान परिवार वाले, माता हैं, वो कैसे रखेंगी। जैसे भी बात आप बता रही थी, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
1: मानसिक स्वास्थ्य की सर महिलाओं को ही थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है, मेल्स को भी होती है, पर वो एक हद तक अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर भी जाते हैं, उनका सर्कल भी अलग होता है, उनका जॉब एरिया होता है। लेकिन फीमेल्स के साथ, जबकि आजकल हमारे यहाँ पे मोस्टली फीमेल्स वर्किंग नहीं होती हैं, घर पे उनका ज़्यादा टाइम बीतता है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ा सा डाउन ही रहता है। और सर, मानसिक स्वास्थ्य की तो हम क्या परिभाषा बताएं, हमारे तो यहाँ पे मानसिक बीमारी को बीमारी माना ही नहीं जाता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जैसे कोई सास या बहू आई, तो सास कहती है कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, खाने पीने को अच्छा है, पहनने ओढ़ने को अच्छा है, पता नहीं किस बात से दुखी रहती है। लेकिन जब हम फीमेल से अकेले में बात करते हैं सर, तब हमें पता होता है कि वो कितनी सारी दुविधा से जूझ रही होती है। और जैसे आपने बताया कि गर्भवती महिलाएं हैं या न्यूबॉर्न बेबी जिनके होता है, उनका तो मानसिक स्वास्थ्य और भी बुरी हालत में है, क्योंकि ना तो वो अपने लिए कुछ कर पा रही है, ना वो बच्चे का ढंग से ध्यान रख पा रही है। और मानसिक स्वास्थ्य तो एक ऐसी प्रॉब्लम है सर, अगर आपका मन बीमार है और आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम है, आप सपोज करो हैंडीकैप, आपके एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, लेकिन अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो सर, और ये हम लाइव एग्जांपल अपने आसपास देखते भी हैं। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है सर कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमारे समाज में इसको कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती है। मानसिक बीमारी को हम बीमारी समझते ही नहीं है जब तक इंसान पागल के लेवल पर ना आ जाए, जब तक वो बिल्कुल ही अपना संतुलन ना खो दे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं सर, और मानसिक स्वास्थ्य में हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, ना कोई दूसरा इसको ठीक कर सकता है, ये हम खुद ही ठीक कर सकते हैं। और इसको ठीक करने के लाखों तरीके हैं सर, आपका जिस साइड इंटरेस्ट है आप उस साइड जाइएगा। मानसिक तनाव होने के भी लाखों रीज़न है, अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो घर परिवार, ऑफिस, बच्चे, बहुत सारे रीज़न होते हैं सर। लेकिन अगर हम इसको ठीक भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास लाखों रीज़न है। डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरफ जाता है। अगर आप बुक पढ़ने में शांति का अनुभव करते हैं तो आप दिन में 15-20 मिनट अपने लिए कोई अच्छी सी बुक पढ़ने के लिए निकालिए। अगर आप घूमने फिरने में अच्छा अनुभव करते हैं तो कोई डेली का आधा घंटा अपने घूमने फिरने के लिए निकालिए। पार्क में जाइए, अकेले बैठिए, कुछ भी करिए। अगर आपको पूजा पाठ या भक्ति करने से अच्छा महसूस होता है तो वही दिन के 40-45 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, जिसमें आप जिस भी भगवान को, जिस किसी को भी मानते हो, तो आप उसके साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो आप फिर शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं घबराएंगे सर। अगर आपको एनीमिया भी हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ये दवाई लेनी है, अगर आपका मन स्ट्रोंग है तो। लेकिन अगर मन कमजोर है तो आप ना अपने लिए कुछ कर पाएंगे सर, और ना किसी दूसरे के लिए।
0: बिल्कुल, तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य है, उसका प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। आखिर में डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपसे बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और हीट वेव के बारे में भी सुनते हैं, लू के बारे में भी सुनते हैं, तो किस तरह से लोग, महिलाएं, बच्चे अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें, क्या खाएं, क्या पिएं, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे।
1: सबसे पहला तो बचाव यही है सर, अगर हमें किसी भी चीज से बचना है तो उस चीज से दूर रहो। तो अगर आपको पॉसिबल है, जितना आप घर पर रह सकते हैं तो उतना आप घर पर रहिएगा, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबको काम करने के लिए भी निकलना पड़ता है। तो उसके लिए फिर आप अपना बचाव कीजिएगा, अपनी बॉडी को कवर करके निकलिएगा। खासकर आपका जो सिर वाला रीजन है, जहाँ पे हीट डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, उसको आप कवर करके निकलिएगा। और अपने साथ हाइड्रेशन के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखिएगा। अगर आपका बीपी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स का घोल है, वो एक बोतल पानी में घोल के आप अपने साथ लेके चल सकते हैं, सिंपल पानी ले सकते हैं। और बजाय कि आप चाय कॉफ़ी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने के, आप रास्ते में भी कभी नींबू पानी पी लिया, कभी आपने या कुछ जो ये जलजीरा टाइप के आते हैं ये पी लिया, मतलब अपनी बॉडी को आपने हाइड्रेट रखना है, किसी भी तरीके से आप उसको रख सकते हैं। दूसरा, अपने आप को कवर करके निकलना है। तीसरा, अपने खान पीन पे ध्यान रखना है, घर से खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है, कुछ भी हल्का फुल्का अपना नाश्ता करके निकलना है। और अगर पॉसिबल हो, आपके पास ऐसा कोई साधन है, तो अपने बैग में एक दो फ्रूट्स जरूर रखिएगा।
0: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर बेबी शर्मा जी आपने आज सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई है, और जरूर वो आपकी बातों का अनुकरण करेंगे, जीवन में आपकी बातों को धारण करेंगे, अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनो।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
3: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
2: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
4: हाँ माँ जी।
5: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
6: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और TB एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को TB होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को TB होता है तो TB का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। TB के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी TB से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत TB की जाँच कराएं और सभी TB मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: बरसात के मौसम में छोटे बच्चों में दस्त की समस्या आम बात है,
6: जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो घबराएं नहीं, हर दस्त के बाद बच्चों को ORS का घोल देते रहें।
5: साथ ही साथ 14 दिन तक लगातार जिंक की गोली देनी है।
6: अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम है तो उसे आधी गोली माँ के दूध में घोल कर देनी है।
5: और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो पानी के साथ 1 गोली रोजाना देनी है।
6: ध्यान रहे, दस्त रुक जाने के बाद भी जिंक की गोली 14 दिन तक देनी ही है।
5: ORS और जिंक की गोली आपको आशा दीदी या फिर नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्ध है। और हाँ, ध्यान रहे, स्तनपान जारी रखना है और खाने के लिए सुपाच्य पदार्थ जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दे सकते हैं।
6: अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों की सहायता लें।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो, तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि

0: इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के समय में हमारे बहुत से किसान भाई प्रगतिशील किसान बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रगतिशील किसान कौन होते हैं, उनमें और हम में क्या फर्क होता है। तो किसान मित्रों, आपको बता दें कि प्रगतिशील किसान वो होता है जो पारंपरिक खेती के तरीकों से हटकर आधुनिक, वैज्ञानिक और नवीन तकनीकों जैसे AI, जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग को अपनाकर उपज और आय को बढ़ाता है, जिससे खेती में कम लागत में अधिक उत्पादन मिलता है और बेहतर मुनाफा होता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरकता और पर्यावरण को भी बचाता है। ऐसे किसान भाई नई फसलें जैसे मशरूम, ड्रैगन फ्रूट उगाते हैं और मशीनों का प्रयोग करते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आता है और वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। प्रगतिशील किसान भाई ड्रोन सेंसर इस्तेमाल करते हैं और साथ ही वो रासायनिक खादों की जगह जैविक खाद, केंचुआ खाद और नीम तेल जैसे प्राकृतिक तरीकों का खेती में प्रयोग करते हैं। प्रगतिशील किसान भाई अनाज के साथ साथ फल, सब्जियां और मशरूम जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाते हैं और वो अपनी खेती में ड्रिप सिंचाई और फसल चक्र जैसी विधियों से उपज बढ़ाते हैं। प्रगतिशील किसान भाई पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा पैदावार प्राप्त करते हैं और ऐसे प्रगतिशील किसान खेती की लागत घटाकर और पैदावार बढ़ाकर सालाना लाखों रुपए कमाते हैं। तो किसान बहन भाइयों, आप समझ गए होंगे कि प्रगतिशील किसान भाई वो होता है जो खेती में लागत को कम करता है और उससे फायदा ज्यादा लेता है आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके। तो किसान बहन भाइयों, आपको भी अपनी खेती में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके खेती में जो लागत है उसको कम करें और उससे फायदा ज्यादा लें। और सरकार भी अनेक योजना चला रही है, उनका लाभ भी आप लीजिएगा। इसके लिए आप अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं और आधुनिक कृषि के बारे में, तकनीकों के बारे में, यंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनका उपयोग अपनी खेती में कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही प्रगतिशील किसान भाइयों की और आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा सत्यवादी हरिश्चंद्र का और कलाकार हैं पप्पू भारती और ऋषिपाल खदाना।
1: किस से

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती से ये रागनी। किस्सा था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। किसान मित्रों, खेत से अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर साल अगर आप खेत में एक ही फसल करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती चली जाती है, पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। लेकिन जब आप बदल बदल के हर साल फसल करते हैं तो खेत की मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उपजाऊ क्षमता है, वो बनी रहती है और फसल उत्पादन है वो आपको अच्छा मिलता है। लेकिन जब आप एक ही फसल हर साल करते रहते हैं तो खेत की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और फसल उत्पादन भी कम हो जाता है और फिर आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम कृषि विविधीकरण की बात करें तो पारंपरिक फसलों की बजाय विभिन्न प्रकार की उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे फल, सब्जी, औषधीय पौधे या फिर खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन जैसी गतिविधियों को अपनाना चाहिए। ये किसान भाइयों की आय बढ़ाने, जोखिम कम करने और मृदा स्वास्थ्य सुधारने और साल भर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। किसान मित्रों, कृषि विविधीकरण केवल एक फसल पर निर्भरता को कम कर कृषि को अधिक लचीला और लाभदायक बनाने की रणनीति है। फसल विविधीकरण में किसान भाई गेहूं, चावल जैसे एक ही फसल चक्र के बजाय दालें, तिलहन, बागवानी, फल सब्जी उगा सकते हैं। इसके अलावा खेती के साथ साथ डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मशरूम की खेती अपना सकते हैं। अब किसान मित्रों, आपके मन में ये भी बात आ रही होगी कि आखिर कृषि विविधीकरण की, फसल विविधीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इससे आपकी आय में वृद्धि होती है। कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर जब आप उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों को अपनाते हैं तो आपकी आय में भारी मुनाफा होता है। इसके अलावा यदि एक फसल खराब हो जाती है तो अन्य फसलें या जो अन्य गतिविधि हैं कृषि के साथ साथ जैसे पशुपालन आपको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही साल भर जो रोजगार का चक्र है वो चलता रहता है। खेती से तो आमदनी 3 महीने बाद 6 महीने बाद होती है, लेकिन खेती के साथ साथ आप कृषि विविधीकरण, फसल विविधीकरण अपनाते हैं तो पूरी साल आपको रोजगार मिलता रहता है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ आय होती रहती है और साथ ही मृदा और पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। एक ही फसल जैसे धान, गेहूं लगातार उगाने से मिट्टी की उर्वरता घटती है और साथ ही फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की सेहत में सुधार होता है और कीटनाशकों की जरूरत कम हो जाती है। इसके साथ ही पानी की कमी वाले क्षेत्रों में धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों की बजाय कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा, मक्का को अपना सकते हैं। इससे क्या होगा, जल संरक्षण होगा और इसके अलावा बाजार में उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग के अनुसार फल, सब्जी और अन्य उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, कृषि विविधीकरण या फसल विविधीकरण न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी आप किसान भाइयों के लिए एक बेहतर विकल्प है। ये पारंपरिक खेती से आधुनिक, टिकाऊ और लाभदायक खेती की ओर एक आवश्यक कदम है। तो किसान मित्रों, आप भी कृषि विविधीकरण, फसल विविधीकरण को अपनाएं और अपनी आय बढ़ाएं। और अब किसान मित्रों, आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और रविंद्र खालोर। किस्सा रहेगा रूप बसंत का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और रविंद्र खालौर से ये रागनी, किस्सा था रूप बसंत का। किसान मित्रों, बुढ़ापा जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है जहां शरीर में शक्ति कम हो जाती है, काम इंसान कर नहीं पाता है, और फिर काम नहीं कर पाता है तो उसकी आमदनी भी कुछ नहीं होती है और खर्चा तो होता ही होता है। अब बुढ़ापे में दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आए, इसके लिए सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना चला रही है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देना है। ये योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी बचत खाता धारक के लिए खुली है जो आयकर दाता नहीं है। इस योजना में पात्र के योगदान के आधार पर 1,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन दी जाती है। पात्रता की बात करें तो 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए और इसके साथ ही उनके पास एक बचत बैंक खाता होना चाहिए। किसान मित्रों, इस योजना के अंतर्गत ग्राहक की मृत्यु के बाद पति पत्नी को समान पेंशन मिलती है और दोनों की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है। अब इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर के पंजीकृत अपने आप को करा सकते हैं और इसके लिए आपके पास एक बचत बैंक खाता नंबर, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, इनकी आपको आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप भी अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी बैंक में जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही अटल पेंशन योजना की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना।

ज्ञानेंद्र सरधाना द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800-11-6666। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

प्रिय बंधु आपके बीच पेश है किस्सा सत्यवान सावित्री। दोस्तों उस मौके से बात कि जब सत्यवान के माता पिता साल देश के अंदर राजा द्युम्न का राज था। मेरे मेहरबानों अंधे होने की वजह से उनके वजीर चौन राय ने एक चाल चलनी चाहिए, उसके दिल में बदी आ गई। उसने प्रजा को बहकाया कि राजा द्युम्न अंधे, इनसे राज नहीं चलेगा। तो दोस्तों और उन्हें मरवाना चाहा। राजा द्युम्न को जो पता चल गई कि चौन राय वजीर में हमारे साथ में चाल चलनी चाहिए, तो राजमहल के बीचों बीच एक सुरंग खुदवाई और उस सुरंग के जरिए बियाबान जंगल की राही ले लेते हैं। दोस्तों कई रोज गुजर गए, अब उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। तो सत्यवान के दिल में एक बात आई कि बियाबान जंगल में लकड़ी काटेंगे और उनको बेच करके माता पिता का और अपना पेट भरेंगे। कंगाली का समय था। दोस्तों बुरे वक्त में आज सत्यवान राजकुमार कंगले के भेष में पास में एक शहर पड़ता था और एक सेठ जी के पास पहुंच गया। भला कैसे एक भिखारी के रूप में कहने लगा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा या यूं कहें कि पिचक जाएगा या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: मेहरबानो, आज ममता की आज्ञा पाके और रोहतास कमर डलिया हाथ में लेके फूल तोड़ने के लिए चल दिया मेहरबानो के कुसौन रास्ते में हुए। और जब रोहतास ने फूल तोड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो भला के होया

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Namaskar. आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं, उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है हिंसा को नो, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं, दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
5: पापा, पापा कहाँ गए? पापा सुनो तो।
6: हाँ हाँ आकांक्षा बेटी, मैं यहीं पे हूँ। क्या हुआ, बड़ी खुश नजर आ रही हो?
5: हाँ पापा, खुशी की तो बात है।
6: अच्छा, ऐसी क्या बात है बेटी जो इतना खुश हो तुम?
5: पापा आप तो जानते हैं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन डेंटल में पूरी कर ली है, और अब मुझे कांगड़ा के सबसे बड़े डॉक्टर आनंद को असिस्ट करने का मौका मिल रहा है। बस 2 साल उनके अंडर काम करूंगी ना पापा, उसके बाद फिर मैं अपना क्लिनिक खोलूंगी।
6: अरे वाह वाह वाह बेटी, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। मेरी बेटी तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। बेटी तुमने तो मेरा सर गर्व से और भी ऊंचा कर दिया है।
5: वो तो मैं हूँ पापा, वो तो मुझे पता है। पापा आप भी बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात है?
6: अरे बेटी खुशी की तो बात है, मेरी बेटी अब अपना खुद का क्लिनिक खोलेगी। और इसी खुशी के साथ साथ बेटी एक खुशी और है मेरे पास तेरे लिए।
5: आपके पास क्या पापा?
6: बेटी तेरे लिए बहुत अच्छा ऑफर है एक, बताऊं क्या?
5: क्या?
6: बेटी अगर तुम्हें शिमला में अपनी प्रैक्टिस करने का मौका मिले तो।
5: पापा इससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती, लेकिन ये मौका कैसे मिलेगा मैं कुछ समझी नहीं।
6: बेटी तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रिश्ता आया है, पालमपुर की एक बहुत ही अच्छी फैमिली है। लेकिन बेटी बात ये है कि वो रहते ना शिमला में है, और लड़के का खुद का बिजनेस भी है, वो भी गारमेंट्स का। और बेटी मैंने पता किया है, खानदान बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
5: पर पापा मैंने इतनी मेहनत की है मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट डिविजन लाने में, और अब जब मेरा करियर शुरू होने वाला है तब आप शादी बीच में लेके आ रहे हो, कैसे पापा?
7: लेकिन बेटा शादी और करियर साथ साथ में भी तो चल सकता है, और शिमला जैसी जगह में तो तुम प्रैक्टिस भी आराम से कर सकती हो और साथ ही तुम्हें वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा। और अब तुम 25 की भी हो गई हो और शादी के लिए भी अब तुम्हारी उम्र हो गई है और बेटा हर चीज का टाइम होता है।
6: देखो कांचा बेटी, तुम बहुत ही समझदार हो और मैं जानता हूँ कि तुम शादी और करियर दोनों को एक साथ ही अच्छे से निभा सकती हो। मुझे पूरा यकीन है अपनी बेटी पर। तुम सोच लो फिर बताना, ठीक है बेटी?
5: ठीक है पापा।

0: अर्जुन आ गए तुम? क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हो?
1: बनो मत, तुम्हें सब पता है।
0: क्या कह रहे हो अर्जुन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो?
1: चुप रहो, मेरा दिमाग खराब मत करो।
0: अर्जुन लेकिन तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा।
1: मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो, कितनी साधारण सी शादी की है तुम लोगों ने। अरे कम से कम 4 स्टॉल ही लगवा देते, कोई ढंग का पहले से बुक करवा देते। नाक कटवा दी तुमने तो मेरे दोस्तों के सामने, और शगुन के नाम पे सिर्फ 25,000। अरे कम से कम हैसियत तो देख लेते मेरी। मैंने तुम्हारे पापा को पहले ही कहा था कि जो कुछ भी वो मुझे देंगे वो सब तुम्हारा है, पर नहीं।
0: लेकिन अर्जुन, दहेज के लिए तो तुम लोगों ने मना किया था, और हमने तो पहले ही तुम्हें बताया था कि हम दहेज नहीं दे सकते, और अब तुम एकदम से ये बातें कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: अरे चुप रहो,
0: हमारी शादी की आज पहली रात है और तुम मुझ पे हाथ उठा रहे हो।
1: अभी तक हाथ नहीं उठाया है, अगर ज्यादा जुबान चलाई तो हाथ उठने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।

0: अर्जुन, ये रहा तुम्हारा टिफिन। और सुनो, शाम को जल्दी आ जाना प्लीज।
1: तुम कौन होती है मुझे ऑर्डर देने वाली? ये मेरा घर है और मैं जब मर्जी आऊँगा।
0: अर्जुन, मुझे ऐसा लगा था कि शादी के प्रेशर की वजह से तुम्हारा मूड ऑफ होगा, लेकिन तुम अभी तक नाराज बैठे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ?

0: अरे आ गए तुम, कैसा रहा आज का दिन?
1: ये मेरा बैग पकड़ो और मेरे लिए खाना लेके आओ।
0: अर्जुन तुमने शराब पी रखी है, लेकिन तुम तो शराब पीते ही नहीं थे। तुमने मुझे शादी से पहले बताया था कि तुम तो शराब पीते ही नहीं हो, लेकिन आज तुम अचानक से शराब पी कर आए हो।
1: हाँ पी कर आया हूँ तो क्या, और रोज पी कर आऊंगा। तुम्हारे घर वालों के पैसे से पी के नहीं आया हूँ। तुम लोगों ने तो दहेज में फूटी कौड़ी तक नहीं दी और बात कर रही हो।
0: अर्जुन मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो सकते हो। तुम तो प्यार की बड़ी दुहाई देते थे, पिछले 6 महीनों से तुम्हारा यही रवैया है। मार पीट कर रहे हो, शराब पी के आते हो, मैं परेशान हो गई हूँ।
1: सोचा तो मैंने भी नहीं था कि महारानी यहाँ खाली हाथ आएगी। अब ये चुपचाप रोना बंद करो और मेरे लिए खाना लेके आओ।

0: ओह, तो मैडम यहाँ आराम से बैठकर खाना खा रही है और उनके पतिदेव दुनिया भर के धक्के खा रहे हैं। बहुत अच्छे, खाओ खाओ, आराम से जी भर के खाओ। और सुनो, ये आंसू बहाने की एक्टिंग अपने पापा के यहाँ करना, इसे साइड में रखो और मेरी बात सुनो। मुझे कल तक पैसे चाहिए और अपने पापा को अभी फोन करो और कहो कि अरेंज करें।
1: लेकिन अर्जुन, अभी पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, वो कहाँ गए?
0: जुबान लड़ाती हो मुझसे? अभी सिर्फ थाली गिराई है, अगर कल तक पैसे नहीं आए तो दांत भी गिरा दूंगा, समझी?
1: और कितना नीचे गिरोगे अर्जुन, कितना नीचे गिरोगे?
0: बदतमीज, जुबान अभी भी चल रही है तुम्हारी?
1: नहीं अर्जुन, मत मारो, नहीं नहीं,
2: और जुबान चलाओ।

0: हेलो पापा।
1: हेलो आकांक्षा बेटी, कैसी हो तुम?
0: मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? माँ, चिंटू और बिन्नी कैसे हैं?
1: यहाँ सब ठीक है बेटी, बस तुम्हारी माँ को दिन रात तुम्हारी चिंता लगी रहती है।
0: जानती हूँ पापा।
1: हाँ बेटी, बेटी वहाँ हालात कैसे हैं?
0: वैसे ही है पापा, और मुझे नहीं लगता कभी ठीक हो पाएंगे।
1: बेटी तू बस एक बार कह दे, मैं तुझे अभी के अभी वहाँ से ले जाता हूँ।
0: नहीं पापा, अब यही मेरा घर है, मुझे यही रहना है।
1: क्यों बेटी? अरे जब हालात सुधरने वाले ही नहीं है तो ऐसे घुट घुट कर जीने से क्या फायदा?
0: मैं नहीं जानती पापा, मुझे नहीं पता। अच्छा पापा मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ आपको।

0: डॉक्टर?
1: हाँ कांचा।
0: मैं चाहती हूँ आप मेरी डोज और बढ़ा दीजिए।
1: आकांक्षा, ये फिर से तुम डोज बढ़ाने की बात कर रही हो? तुम्हें लगता है इससे कुछ होने वाला है?
0: मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज के झगड़े से, मुझसे सहन नहीं हो रहा अब।
1: तो इसके लिए तुम्हें डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं है आकांक्षा, तुम्हें आगे बढ़कर कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत है, और जब तक तुम अपने लिए नहीं बोलोगी तब तक तुम्हारी मदद कोई कर नहीं पाएगा। तो इसलिए उठो, चलो आगे बढ़ो और हिंसा को कहो नो, क्योंकि तुम एक डेंटिस्ट हो, अपना जीवन यापन कर सकती हो। तो तुम क्यों ऐसे जीवन जी रही हो जहाँ तुम्हें तुम्हारे अधिकार नहीं मिल रहे, जहाँ तुम्हारे साथ हर रोज हिंसा होती है, तुम्हें प्रताड़ित किया जाता है? अब तुम्हें जागना होगा और ये समझना होगा कि अब वक्त आ गया है, तुम आगे बढ़ो और इस सब से बाहर निकलो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो और अपने आप को पहचानो। तुम सब कुछ कर सकती हो अगर तुम ठान लो। अपने आप को पहचानो आकांक्षा और हिंसा को कहो नो। और साथ ही जितनी भी महिलाएं इस वक्त हमें सुन रही हैं, मैं उनको भी जरूर कहूंगी कि जब तक आप खुद हिंसा को ना नहीं कहेंगी, जब तक आप खुद हिंसा को नो नहीं कहेंगी, तब तक इस प्रताड़ना से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आकांक्षा, तुम भी हिंसा को कहो नो।
0: डॉक्टर, आप ठीक कहती हैं। मैं अब और ये जुल्म नहीं सहूंगी। मैं इसके खिलाफ जरूर लड़ूंगी। मैं और अत्याचार नहीं सहूंगी। बस अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस हिंसा रूपी बेड़ियों को तोड़ डालूंगी। मैं अभी जाकर अपने ऊपर हो रही हिंसा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा कुन्नू कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
2: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
3: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की में आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं धारण करकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
3: क्या क्या हो बेटिया?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
3: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
4: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। स्मार्ट के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसका शीर्षक है हिंसा को नो। इस संबंध में बहुत सारी बातें आती हैं, मसलन भ्रूण हत्या, बचपन का हनन, बाल उम्र में शारीरिक दर्द, कानूनी सलाह, भेदभाव, समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, घर और पास पड़ोस के दायरे, बदलती शारीरिक संरचना, इंटरनेट का जाल, दहेज प्रथा, वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार। तो कहने का आशय यही है कि समाज में जितनी भी कुरूतियां हैं उन कुरूतियों को दूर करने का एक माध्यम महिला सशक्तिकरण पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें अब हमें सहयोग मिला है रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम हमारे स्टेशन पर जो बनाए गए हैं दूसरे स्टेशन समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।
8: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। रेडियो आपके लिए लेकर आया है एक विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पर आधारित है जो कि स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना तथा उन्हें सशक्त करना है ताकि वे इससे मुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा सके। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हाय अंजू।
1: हाय, कैसी हो शिल्पा?
0: मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे कॉल किया?
1: पहले ये बता कि तू पक्का ठीक है?
0: हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं
1: ओके। अच्छा, मैं सोच रही थी कि शॉपिंग करने चले, क्या बोलती है?
0: नहीं यार, मेरा मन नहीं है और घर पर बहुत सारा काम है। ऐसा कर तू, हुआ मैं अगले हफ्ते चलती हूँ।
1: चलना यार, कितना टाइम हो गया हमें साथ में बिताए हुए। मेरा बहुत मन है तुझसे मिलने का, और वैसे भी आज पानीपुरी खाते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है। चलना यार, चलते हैं। और मैं जानती हूँ तुझे पानीपुरी कितनी पसंद है।
0: हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन
1: चलना यार, चलते हैं। और मैं जानती हूँ तुझे पानीपुरी कितनी पसंद है।
0: हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन सच में अंजू, मुझे आज बहुत काम है घर पर, मैं नहीं आ पाऊंगी। आई एम सॉरी।
1: अरे यार, काम होता रहेगा, थोड़ा सा टाइम निकाल देना मेरे लिए। क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती?
0: अरे यार, ऐसा नहीं है अंजू। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे बगल वाले चौराहे पर मिलती हूँ।
1: चल ठीक।
0: हाँ आती हूँ मैं।

0: आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ये लीजिए पानी।
1: यहाँ रख दो। और पहले ये बताओ कि कितने पैसे खर्च करके आई हो आज?
0: जी वो अंजू ने जिद की थी तो ये एक साड़ी ले ली थी 2000 की।
1: पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो इतनी महंगी साड़ी लेकर आई हो? तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है ये जो तुम इस तरह उड़ाती हो, जब जी में आया तब खर्च कर दिए, ऐसा नहीं चलेगा। ये फिजूल के खर्चे अब बंद करो, समझी हो?
0: इस लेकिन इसमें पापा कहाँ से आ गए इसमें?
1: ज्यादा जवान चला रही हो तेरी है? ज्यादा जवान चला रही है आजकल। दफा हो यहाँ से। ना काम की ना काज की, बस फिजूल का खर्चा करने आती है। हेलो।
2: और भाई कैसे हो?
1: अरे बढ़िया हूँ बढ़िया, तू कैसा है? क्या बात है, आज बड़े दिनों बाद कॉल किया। सब ठीक तो है ना? कैसे याद किया आज मुझे?
2: हाँ हाँ सब बढ़िया है, सोचा बड़े दिन हो गए तुमसे बात कर लूँ।
1: हाँ यार दिल तो मेरा भी बड़ा था। मेरे घर में तो सब बढ़िया है, और तुम बताओ तुम्हारे घर पर सब ठीक ठाक है? सब खुशल मंगल है?
2: सब ठीक है, तुम बताओ।
1: अरे सब मस्त है रे।
2: अच्छा भाभी को देखा आज मैंने मॉल में, भाभी का क्या भाई आया हुआ है?
1: नहीं क्यों?
2: नहीं नहीं वो ना भाभी के साथ कोई था तो मुझे ऐसा लगा कि
1: हाँ हाँ कोई दोस्त वोस्त होगा उसका। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया।
2: हाँ हाँ ठीक है
1: ठीक है भाई, ठीक है ओके। शॉपिंग करने किसके साथ गई थी? कौन आशिक बुलाया था अपना? हाँ
0: जी अंजू के साथ।
1: अंजू? हाँ हाँ अंजू सब पता है मुझे तेरी हरकतें। सच सच बता किसके साथ गई थी, सच बता नहीं तो मैं आज तेरी।
0: मैं सच बोल रही हूँ मैं।
1: अरे झूठ बोलती है, अपने आशिक को

0: बुलाती है और नाम तो अंजू का लेती है, मूर्ख समझती है, मूर्ख समझती है, मूर्ख समझती है, मूर्ख समझती है,
1: मूर्ख समझती है। मैं सच बोल रही हूँ, मत मारिए प्लीज।
0: अरे क्यों मत मारियो, इसी के लायक है तुम।
1: वो अंजू के पति थे, मैं सच बोल रही हूँ।
0: शिल्पा, शिल्पा, अरे शिल्पा, अरे कहाँ मर गई है शिल्पा।

0: जी जी इंस्पेक्टर साहब, आप?
1: तुम्हारा नाम सौरभ है?
0: जी जी, लेकिन क्यों, क्या हुआ?
1: क्या हुआ?
0: हाँ, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब?
1: चल, ये तो तुम्हें पुलिस स्टेशन में चल के पता चलेगा।
0: लेकिन मैंने किया क्या है, मुझे बताओ तो सही।
1: औरत पे हाथ उठाता है? चल अब पुलिस स्टेशन चल, तेरे को बड़ा जाके बताता हूँ मैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। शिल्पा, तुम ही बोलो ना इनको, मुझे माफ कर दो। शिल्पा, बोलो ना।
2: बस

अभी आप सुन रहे थे महिला सशक्तिकरण पर आधारित हिंसा को नो कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला रेडियो गुंजन 91.2 धर्मशाला का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट के सौजन्य से विशेष कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं और हमारे रेडियो स्टेशन द्वारा जो बनाए गए हैं विशेष कार्यक्रम दूसरे स्टेशन भी समय दर समय प्रसारित कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कोहली आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस ऑडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में हम लोग आज क्लास 6 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है NCERT की, उसमें शामिल एक कहानी है नादान दोस्त, जो कि हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और लेखक प्रेमचंद की लिखी हुई है। प्रेमचंद सबसे बड़ा नाम माना जाता है हिंदी साहित्य में, भारतीय साहित्य में, और कहानी और उपन्यास में तो वो बेजोड़ है ही हैं। साथ ही उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी और कहानियों की संख्या जानकर आपको आश्चर्य होगा दोस्तों कि उन्होंने लगभग 300 के आसपास कहानियां लिखी, और उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि हम बच्चों के लिए, बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरी बात है कि उनका विषय उस समय ये नहीं था कि वो पाठ्य पुस्तकों में इस्तेमाल होंगी, लेकिन हम कुछ सामग्री ऐसी होती है जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ये कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जो कि बच्चों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है, नादान दोस्त। नादान दोस्त इसमें दो शब्द हैं और दोनों ही आपको एहसास होगा कि नादान जब हम कह रहे हैं तो थोड़ा एक अनजाना भाव, एक नादानी, एक थोड़ा सा ना समझपन है, और दोस्त जब कह रहे हैं तो, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं। इसलिए नादान दोस्त इस कहानी का जो मूल विषय है कि हम किसी की सहायता करना चाहते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कई बार कि वो कैसे करनी है, तो उसमें वो नादानी हो जाती है और हम भला करने के चक्कर में कुछ उल्टा कर बैठते हैं। खास तौर से अगर वो बच्चों के संदर्भ में बात हो तो बच्चों को एक लगातार कहना चाहिए, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। बच्चे स्वभाव से बहुत प्यारे हैं, वो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन शायद थोड़ा सा वो उल्टा हो जाता है। इसमें भी कुछ ऐसी ही है कि दो बच्चे हैं, वो चिड़िया ने बच्चे दिए हुए हैं और वो अंडे दिए हुए हैं, वो उनकी रक्षा करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन वो सारी कथा उल्टी हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि हम इस कहानी का आनंद लें और कहानी से जो भी बात आगे बढ़ेगी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर दोस्तों कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि कहानी की शुरुआत देखिए कि आप थोड़ी सी देर में ही लगेगा कि कहानी की एक खूबी ये कही जाती है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये सब इसमें भी वही भाव है। और बच्चों में एक बहुत बड़ा स्वभाव होता है, बहुत बड़ी स्वाभाविक वृत्ति होती है, और वो है कि वो जानना चाहते हैं कि क्या है इसमें, क्या है ये, कैसे होता है। सवाल बहुत करते हैं बच्चे और उन सवालों के द्वारा ही वो कहना चाहिए वो सीखते हैं। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि वो सवाल बहुत हैं। कहानी का आरंभ है कि केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। इसमें एक शब्द हमारे लिए थोड़ा सा जानने वाला है यहाँ, और वो है कि बाकी तो हम जानते हैं, चिड़ा है, चिड़ी है, उसको हम जानते हैं। दरअसल क्या है, कार्निश हम जो दीवार घर के बाहर, दरवाजे के आसपास या कहीं पे भी एक छज्जा जैसा निकाल दिया जाता है, हम उसको कार्निश बोलते हैं। और उस छज्जे के ऊपर ही चिड़िया ने अंडे दिए थे और ये दोनों बच्चे जो कि भाई बहन हैं वो उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको देखने में बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। उन दोनों के दिल में बहुत सारे सवाल उठते, और सवाल कितने थे देखिएगा उसकी एक झलक, कि उन स्वाभाविक इच्छा है कि हम जानना चाहते हैं, वो बच्चे जानना चाहते हैं अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इतने सारे सवाल हैं इसी एक पैराग्राफ में, आपको 7-8 सवाल बच्चे जानना चाहते हैं। सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम जानना चाहते हैं, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। स्वाभाविक है, जब हम बच्चों को या बड़ों को किसी को भी कोई सवाल का उत्तर नहीं मिलता तो फिर वो आपस में ही बातचीत करके बच्चे कैसे होंगे, कितने होंगे, किस रंग के होंगे, अंडे कैसे हैं। ये दोनों बच्चे केशव और उसकी बहन श्यामा आपस में बातचीत करते हैं और श्यामा पूछती है, कहती है, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा फिर पूछती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब नहीं दे सकता था। पेचीदा मतलब थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा जटिल है, उलझा हुआ सवाल है, इसलिए वो शांत रहता है, चुप रहता है, उसका जवाब नहीं दे पाता। और इस तरह 3-4 दिन गुजर जाते हैं, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती रहती है और वो अधीर होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। और फिर एक दिन 3-4 दिन के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे और उनके सामने एक सवाल पैदा हुआ, अगर बच्चे निकल आए तो वो खाएंगे क्या, अर्थात उनका चारा क्या होगा। और चिड़िया तो इतनी छोटी सी है, वो बेचारी इतने बच्चों के लिए कहाँ से दाना लाएगी, कहाँ से भोजन लाएगी। गरीब बच्चे भूख के मारे बेचारे कहीं चू चू करके मर न जाए। और इस मुसीबत का अंदाजा लगाकर दोनों बच्चे घबरा उठते हैं और फैसला करते हैं कि इस छज्जे पे, कार्निस पे थोड़ा सा दाना रख दिया जाए और इससे होगा क्या। श्यामा कहती भी है, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना होगा। क्यों, तब क्यों जाएगी चिड़िया कहीं, क्यों भैया बच्चों को धूप तो न लगेगी। श्यामा फिर पूछती है कि चारे का तो इंतजाम हो गया, भोजन का तो, कहीं ऐसा नहीं फिर उनको धूप लगे। केशव कहता, रे इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। वह बोला, हाँ तकलीफ तो होगी, जरूर तकलीफ होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। और फिर वो दोनों निर्णय लेते हैं, आखिर फैसला लेते हैं कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और उनके पास थोड़े से चावल और पानी भी रख देना चाहिए ताकि वो आराम से भोजन पानी कर सकें। तो फिर लग जाते हैं दोनों बच्चे इस काम में और क्या करते हैं, श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से थोड़े से चावल निकाल लाई और फिर केशव ने जो एक कटोरी थी जिसमें तेल था उसको नीचे गिरा दिया और उसको अच्छे से साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से, चांदनी मतलब ऊपर जिससे छांव करनी है, वो कपड़ा कहां से आए। और फिर सोचते हैं, अगर कपड़ा आ भी गया तो उस कपड़े को वो टिकेगा कैसे, उसको सहारा चाहिए कुछ ना कुछ, अर्थात उसके लिए उसको कुछ छड़ियां लगानी होंगी तो वो कैसे लगाएंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहता है, उधेड़ बुन यानी कुछ कभी सोचता है कभी कुछ सोचता है, और आखिर में वो उसका भी हल निकाल लेता है और श्यामा से कहता है, जाकर कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है ना उसको उठा ला और उसको, और ध्यान रखना कि अम्मा जी को इसका पता ना चले। वो श्यामा कहती है फिर, लेकिन वो टोकरी तो फटी हुई है बीच में से, उसमें से धूप आएगी। तो कहता, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो बड़ा है तो वो झुंझलाकर कहता है, तू पहले टोकरी तो ले के आ, उसका जो सुराग है उसका रास्ता मैं बंद करने का, उसका सुराग बंद करने का कोई ना कोई मैं रास्ता निकालता हूँ। श्यामा टोकरी ले आती है और उसमें जो सुराग था उसमें कागज ठूस दिया जाता है और इस तरह से वो एक टहनी के सहारे उस टोकरी को अड़ाकर दिखाता है कि देखो हम इसको ऐसे रखेंगे जिससे कि धूप नहीं आएगी और धूप से बच जाएंगे। और ऐसे में जब वो सोचती, वाह भैया कितने चालाक हैं, भैया कितने चालाक मतलब कितने होशियार हैं यहाँ पे। और देखिएगा इस कहानी में बच्चों, आपने देखा होगा बातचीत में भी, और आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता भी लें, उसके साथ साथ पढ़े भी इसको, तो देखेंगे इसमें सवाल ही सवाल है। कहानी सवालों के माध्यम से ही आगे बढ़ रही है कि ये कैसे होगा, कहाँ से आएगा, कौन लाएगा, और इस तरह से वो एक दिन वहाँ पे समाप्त होता है और एक अंश कहानी का कहिए कि यहाँ पे रुकता है। और फिर मौसम कैसा था, ये गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे और अम्मा जी ने दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई। लेकिन आज बच्चों की आंखों में नींद नहीं थी, क्यों? क्योंकि उनका मन तो बाहर छज्जे पे लगा हुआ था। अम्मा जी को कहना चाहिए कि बहलाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, एक तरह से दोनों चुपचाप दम रोक के आंख बंद किए हुए मौके का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही अम्मा जी सोएंगी वो अपना दरवाजे की जो सिटकनी है वो खोली और बाहर निकल आए, और अंडों की हिफाजत के लिए एक तरह से पूरी तैयारी होने लगी। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया लेकिन उससे काम नहीं चला, शायद थोड़ा नीचे रह गया, तो वो नहाने की जो चौकी होती है बाथरूम के लिए, हमारे स्नान के लिए, वो भी उठा लाया और उस चौकी को नीचे रख के स्टूल उसके ऊपर रख दिया और फिर डरते डरते उस पर चढ़ गया। श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ लिया। इसमें जो स्टूल लाए थे उसकी जो चार टांग होती हैं वो थोड़ी सी इक्वल नहीं थी, बराबर नहीं थी, इससे वो हिल रहा था और जैसे ही हिलता था तो केशव को गिरने का खतरा होता था, उसको बड़ी तकलीफ होती थी। और फिर वो उसको डांटता था चुपके से, मतलब दबी आवाज में डांटता था, क्योंकि वो छोटी है, कहता ठीक से पकड़ो इसको वरना उतर कर बहुत मारूंगा। और बेचारी श्यामा, थोड़ा सा उसका ध्यान बार बार ऊपर लगा हुआ है छज्जे पे, क्यों? क्योंकि वो भी देखना चाहती है कि वो अंडे कैसे हैं, क्या है ऊपर। और जैसे ही केशव ने कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई। और केशव ने देखा कि वहां थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पे तीन अंडे रखे हुए हैं। लेकिन ये उस तरह का घोंसला नहीं था जैसा कि सामान्यतः तो होता है, और वो घोंसला थोड़ा अलग लगा उसको। तभी श्यामा नीचे से पूछती है कि भैया कितने बच्चे हैं, कितने अंडे हैं? केशव कहता है कि तीन अंडे हैं लेकिन अभी बच्चे नहीं निकले हैं। तभी वो श्यामा भी कहती है, भैया मुझे भी दिखा दो, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। पहले कहता हाँ हाँ दिखा दूंगा, पहले जा थोड़े से जो चीथड़े हैं वो ले आ ताकि मैं इसके नीचे बिछा दूं और ये आराम से फिर वो रखे रहें। श्यामा दौड़कर जाती है और अपनी जो पुरानी धोती है उसका एक टुकड़ा ले आती है और उसको वो गद्दी की तरह तह करके वहां पे बिछा देता है। और एक बार श्यामा फिर कहती है कि भैया मुझे भी दिखाओ कैसे हैं। फिर कहता नहीं नहीं पहले तुम टोकरी दो। टोकरी भी दे देती है, उसके ऊपर छाया कर देते हैं वो लोग, और फिर जो पानी की कटोरी है और चावल के दाने हैं वो प्याली भी वहां रख देते हैं दोनों। और फिर वो कहता है कि पहले मैं इसको कर दूं फिर मैं नीचे उतर आता हूं फिर तुमको दिखाऊंगा। सब कुछ कर देते हैं वो और वो धीरे से उतर आता है। अब श्यामा कहती है, गिड़गिड़ाती है एक तरह से कि भैया भैया मुझे भी दिखाओ, हमें भी देखना है। तो वो कहता कि नहीं नहीं नहीं भाई, अब तुम गिर जाओगी और तुमको चोट लग जाएगी। नहीं, वो कहती नहीं मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। लेकिन केशव उसको नहीं दिखाता और उसको ऊपर चढ़ाता नहीं। बार बार वो कहता नहीं तू गिर पड़ेगी तो अम्मा मेरी चटनी बना देगी, अर्थात अम्मा मुझे बहुत मारेगी, कहेगी कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा मुझे दिखा दो। तो कह रहे क्या करेगी तू देख के, अरे क्योंकि वो बड़ा है, थोड़ा सा बड़े वाली भाव है कि वो बहन सारी सहायता करती है लेकिन फिर भी वो बड़ा है तो वो उसको नहीं दिखाता। इसी बीच चिड़िया बार बार वहां आती हैं जाती हैं लेकिन वो बार बार उड़ जाती है वहां से। और श्यामा फिर उसको थोड़ी सी शिकायत करती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, तो मैं अम्मा जी से कहूंगी, आपकी शिकायत लगाऊंगी एक तरह से। तो केशव उसको डांटता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। तो वो श्यामा कहती है कि तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, और गिर पड़ती तो चार सर ने हो जाते। ये चार सर होना, देखिएगा एक हम बड़ा रचनाकार या कहानीकार कोई भी होता है उसमें भाषा में जो एक रवानगी और ताजगी आती है उसमें बीच बीच में मुहावरे भी इस्तेमाल करता है। चार सर होना ये मुहावरे की तरह होता है कि गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी, तो उसी तरह का भाव है इसमें। लेकिन वो श्यामा कहती है हो जाते तो हो जाते, कम से कम देख तो लेती मैं। तो तभी अचानक दरवाजा खुलता है और माँ बाहर आती है। फिर कहती है, अरे तुम दोनों बाहर कब आ गए? मैंने कहा था ना कि दोपहर में बाहर नहीं निकला। लेकिन दरवाजा किसने खोला? अब सवाल ये था कि श्यामा चाहती तो उसको बता देती कि केशव ने खोला, लेकिन श्यामा चुप रहती है क्योंकि उसे पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्यामा कि मैं बता दूं और केशव पिड़ जाए तो भैया पिड़ जाएं। इस चक्कर में वो चुप रहती है। या दो कारण थे, एक तो उस भैया की पिटाई का और दूसरा कारण ये था कि कहीं श्यामा को ये लग रहा था, एक तो प्रेम था भाई के प्रति और दूसरा ये था कि इस कसूर में इस कहना चाहिए जो गर्मी के में बाहर जाके उन सारी जो कार्यक्रम किया उन्होंने, इसमें वो भी बराबर की ही कसूरवार थी, वो भी बराबर की ही दोषी थी, इसलिए वो चुप रहती है और वो दरवाजा बंद करके सो जाते हैं आराम से। दोपहर में माँ उसको हवा करती है और वो आराम से सो जाते हैं। फिर अचानक 4 बजे जब उनकी नींद खुलती है तो श्यामा दौड़कर बाहर कार्निश के पास जाती है और देखती है कि अरे ये क्या, टोकरी का कहीं पता नहीं है। और वापिस जाती है तो देखती है कि अंडे तो नीचे पड़े हैं और शायद बच्चे उड़ गए हैं। श्यामा को यही लगता है, वो उल्टे पांव दौड़ती है, यानी कि तुरंत वापिस आती है और भैया को जगाती है और कहती है, भैया भैया उठो, बाहर देखो कि बच्चे तो उड़ गए, अंडे नीचे पड़े हुए हैं। और बाहर आके केशव देखता है तो वो तो सचमुच अंडे टूटे हुए नीचे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने जैसी चीज है वो बाहर निकली हुई है। और उसके साथ साथ जो पानी की कटोरी और चावल की कटोरी है वो भी टूटी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, चेहरे का रंग उड़ना मतलब वो डर जाता है और आंखों से अपना सहमी हुई आंखों से डर के मारे नीचे देखता है। श्यामा पूछती है कि अब भैया बच्चे उड़ गए क्या? तो थोड़ा उदास होके करुण स्वर में वो कहता है, अरे नहीं, अंडे तो टूट गए। बच्चे कहाँ गए? श्यामा फिर पूछती है, गए तेरे सर में, देखती नहीं अंडों से जो उजला उजला पानी निकल आया है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बनता, अर्थात जब वो अंडे टूट गए उसमें से जो सफेद सफेद है पानी निकला है वही उसकी तरफ बता रहा है कि इन्हीं से बच्चे बनते। और तभी देखता है कि माँ हाथ में एक सोटी लिए हुए आती है कि तुम दोनों फिर बाहर धूप में क्या कर रहे हो? और श्यामा कहती है, अम्मा चिड़िया के अंडे टूट गए। अम्मा देखती है और उनको डांटती है कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा इसीलिए वो टूट गए, जोर से डांटती है उनको। अब श्यामा को भैया पे कोई तरस नहीं आता, वो भी सारी कहानी उसको बता देती है कि शायद भैया ने उसको अंडों को ठीक से नहीं रखा होगा और वो इससे गिर गए और इसी से वो टूट गए। लेकिन वो कहती है कि अम्मा अम्मा भैया ने अंडों को छेड़ा था। और केशव बेचारा डरा हुआ भीगी बिल्ली बन के चुपचाप बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है वहाँ पे। और माँ फिर पूछती है, आखिर तू गया कैसे वहाँ पे, पहुँचा कैसे वहाँ तक? कि फिर श्यामा बताती है कि इन्होंने हम लोगों ने चौकी स्टूल पे रखी। और केशव भी कहता है कि मैं तो चौकी लेकिन जो स्टूल है वो तुमने ही पकड़ा हुआ था। फिर माँ आखिर में सारी बात को समझते हुए कहती है कि तू, केशव को कहती है, तू इतना बड़ा हो गया तुझे अभी भी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। अर्थात किसी भी पक्षी के अगर हम अंडों को हाथ से छू देते हैं तो वो उसकी गंध को पहचान के, यानी कि वो अंडे एक तरह से खराब हो जाते हैं और वो चिड़िया फिर उसके ऊपर नहीं बैठती और वो एक तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फिर अंडे चिड़िया उनको दोबारा से नहीं सहती, उनके ऊपर नहीं बैठती। और इसीलिए चिड़िया ने वो अंडे नीचे गिरा दिए, माँ कहती है। और क्या करती वो चिड़िया? और इसका पाप किसके सर चढ़ेगा? इसका पाप चढ़ेगा केशव के सर। हाय हाय, तुमने 3 जाने ले ली दुष्ट, तुमने, माँ एक तरह से केशव को डांटती है। केशव रोनी सूरत बनाकर कहता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। माँ फिर सोचती है कि शायद बात ये भी कुछ और करना चाहते थे, कुछ और हो गया। और फिर वो हंसती है, लेकिन इस बात का केशव को कई दिन तक पछतावा रहता है, पश्चाताप रहता है। और बात क्या हुई कि अंडों की हिफाजत करने के जोग में, अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में अंडों को सहज कर रखने के कारण, इच्छा के कारण उनका सत्यानाश हो गया। वो उनका सत्यानाश कर डाला और केशव को इस बात का बड़ा पश्चाताप होता है। वो उनको बार बार, कभी कभी तो वो रो भी पड़ता है। और फिर उसके बाद चिड़िया कभी दिखाई नहीं दी वहां, दोनों की दोनों चिड़िया वहां से दोबारा कभी नहीं आई। मित्रों, कहानी बहुत सहज है, कहानी बहुत प्यारी है, कहानी हमारी जिज्ञासा से जुड़ती है, कहानी में बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं, बच्चे हर बात को जानना चाहते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा, और वो लेकिन बड़ों के पास कई बार उन सवालों का जवाब देने की फुर्सत नहीं होती। जैसे अगर इसी कहानी को हम देखें, अगर हम पहले माँ या पिताजी में से दोनों में से कोई ये बात बता देता कि ये अंडों को हमें नहीं छूना है, तो शायद ये दुर्घटना नहीं घटती। लेकिन बच्चों की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो हर बात का कारण जानना चाहते हैं और हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं, उनमें बाल सुलभ जिज्ञासा होती है, और इस जिज्ञासा को पूरा करने के कारण ही कई बार उनसे बाल सुलभ गलतियां भी होती है। और इस कहानी में ही एक और चीज ध्यान देने वाली है, और वो क्या है, वो ये है कि भाई बहन का आपसी रिश्ता भी देखने वाला है। केशव बड़ा है, वो बहन से सारे काम तो कराता लेकिन उसको अंडे देखने नहीं देता। इसी प्रकार वो सारे एक तरह से उसको डांटता भी है और बीच बीच में आप उसकी झलक पाते हैं। और जैसा मैंने कहा था, इस कहानी में आप कुछ मुहावरे भी देखेंगे, जैसे कि चार सर न हो जाते, चेहरे का रंग उड़ गया, भीगी बिल्ली बन गया। ये बहुत सारे, आप इसको जब कहानी को दोबारा सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा। और मैं फिर एक बार आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि बच्चे वास्तव में दोस्त की भूमिका निभाना चाहते थे, वो चिड़िया और उसके अंडों की सहायता करना चाहते थे, लेकिन नादानी में वो गलती कर बैठे और वो अंडे नष्ट हो गए। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी शायद नादान दोस्त है। अब आपके लिए मित्रों बहुत सारे आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे और आने ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये कहानी सवालों से भरी हुई है। आप इस कहानी को दोबारा पढ़ेंगे तो कई बार केवल जवाब की तलाश मत करिए, सवालों को भी देखिए। मैंने इस कहानी को जब आज पढ़ा फिर से आपके लिए दोबारा, तो मुझे इतनी लंबी सूची मिली सवालों की, मुझे तो मज़ा ही आ गया। आप भी ढेर सारे सवाल बनाइए, इसमें कम से कम 30-40 सवाल हैं, एक एक पैराग्राफ में 8-8, 10-10 सवाल हैं। आप उत्तर नहीं, केवल सवाल बनाइए, फिर उत्तर उनके अपने आप आएंगे। जैसे अगर हम इस पाठ के जो प्रश्न अभ्यास हैं वो भी देखेंगे, तो अगर आपने कहानी का आनंद लिया, कहानी को अच्छे से समझा, कहानी को समझा, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें। देखिए, जैसे कि शुरू में ही उसके बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अंडे कैसे होंगे, पहला सवाल ऐसा ही है प्रश्न अभ्यास में। और दूसरा सवाल क्या है, केशव ने और श्यामा ने वो टोकरी, पानी, चीथड़े क्यों रखे, वो भी उनकी सहायता के लिए। और एक सवाल ये भी कि भाई अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उनसे दोस्ती निभाई या उनसे नादानी हो गई। ये बहुत सारे सवाल आपको इस कहानी में दिखाई देंगे, और आप नए सवालों की सूची बनाइए, आप उससे भाषा सीखेंगे, सवाल बनाना सीखेंगे, उत्तर खोजना सीखेंगे। और साथ ही साथ आप चाहें तो एक नई कहानी भी बना सकते हैं कि अगर इस कहानी में नया मोड़ दे सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए अंडे नहीं गिरते तो फिर उसके आगे कहानी कैसे चलती। आप बहुत सारे सवाल इसमें हो सकते हैं, आप कल्पना करके देखिए, जो कि अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न अभ्यास में भी दिया हुआ है कि ये गर्मी के दिन थे, सर्दी के दिन होते तो कैसा होता। और बहुत सारे इसमें कहना चाहिए व्याकरण से जुड़े हुए भी सवाल हैं। मित्रों, व्याकरण हम बार बार कह रहे हैं कि संदर्भ के साथ, पाठ के साथ उसको मिलाकर देखें तो आपको आसानी से समझ में आएगी। जैसे अगर आप इसमें संज्ञा और विशेषण देख रहे हैं, विशेषण ही देख लीजिए, बच्चे कैसे तगड़े, जैसे उदाहरण दिया हुआ है, सब्जी कैसी है मसालेदार है, अर्थात आप एक बार उन चीजों को ध्यान से देखेंगे कि जो किसी की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, वो संज्ञा हो स्वरनाम हो, और क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है। आप इस पाठ को धीरे धीरे पढ़िए, अभ्यास को थोड़ा सा देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, आप इसका आनंद ले पाएंगे। हम भी चाहते हैं कि कहानी है तो कहानी का आनंद ले। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
3: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878-93-7770. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी मौसम की भविष्यवाणी। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना मौसम अच्छा कब और कैसे होता है। हर मौसम बनता है विभिन्न कारकों की आपसी जटिल क्रियाओं से, जिनमें शामिल है हवा की गति, दबाव, तापमान, बादलों की उपस्थिति, नमी और वर्षा इत्यादि। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी मौसम की भविष्यवाणी।

0: ये दरवाजे खिड़की बंद कर देना, लगता है तूफान आने वाला है।
1: अच्छा अभी करती हूँ।
0: अरे मानव तू कहाँ चला आप?
1: तूफान को देखने।
0: अरे ये तूफान क्या कोई जानवर है जो तुझे दिखाई दे जाएगा? हवा तेज हो जाए तो तूफान का रूप ले लेती है, तब हवा की आवाज साए साए आती है, पेड़ उखड़ जाते हैं, उनकी डाले टूट जाती है। हाँ
2: हाँ मम्मी, हवा की आवाज तो आ रही है।
0: ए सृष्टि बेटा, जल्दी से बाहर सूख रहे कपड़े उतार ले वरना सारे के सारे उड़ जाएंगे। हाँ।
1: अच्छा मम्मी। दीदी बाहर का नजारा कैसा है?
3: गिर आई काली घटा मतवारी,
1: तो सावन की आई बाहर।
0: ए, क्या उठपटांग गा रहे हो तुम लोग? अभी तो मई का महीना है, सावन कहाँ से आ गया अभी?
2: पर मम्मी गाना तो ऐसा ही है, क्या केवल सावन में ही घटा आती है क्या?
4: हाँ मम्मी, एक गाना मैंने भी सुना है, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम के।
2: मम्मी मेरे गाने में काली घटा आती है तो सावन आता है, और दीदी तुम्हारे गाने में काली घटा आती है तो ठंडी हवा आती है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि ठंडी हवा आई या नहीं।
0: अरे बुद्धू, हवा में उड़ जाएगा बाहर जाएगा तो भीतर आके बैठ जा। और हाँ सृष्टि, तू जरा अपनी बुआ जी के घर फोन लगाना और फोन करके पूछ कि विवेक और तुम्हारे पापा अभी वहाँ से निकल पड़े या नहीं।
4: हाँ जी मम्मी।
0: और सुन, अगर अभी नहीं निकले ना तो कहना अभी वो वहीं रहे, बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, हो सकता है बारिश भी आ जाए।
4: हाँ हाँ ठीक है।
2: मम्मी बाहर से ठंडी हवा आ रही है, अब तो बारिश जरूर आएगी।
0: ओहो ये तो बेमौसम की बरसात है, अभी तो बरसात आने में देर है।
2: लो मम्मी, आप तो कह रही थी कि बरसात आने में देर है और बारिश होने भी लगी। मम्मी मैं बारिश में जाके नहा लूं।
0: मम्मी प्लीज ना। मम्मी क्या करता है तू, तंग मत कर। अरे सृष्टि बाहर से कपड़े उतारेगी नहीं?
1: हाँ मम्मी।
0: आज मौसम को भी पता नहीं क्या हो गया, अच्छी खासी धूप निकली थी, अचानक आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी।
2: मम्मी मैं भी अखबार में देखता हूँ कि आज मौसम विभाग ने मौसम के बारे में क्या लिखा है।
0: अरे मौसम वालों की तो भली कही, जब वो कहते हैं आसमान साफ रहेगा तो बादल छा जाते हैं, जब वो कहते हैं बारिश होगी तो तेज गर्मी और धूप से हम बेहाल हो जाते हैं। अरे सृष्टि बेटा देखना दरवाजा खोल, कौन है?
2: हाँ जी मेरा दोस्त बबलू होगा, वो मुझे बारिश में नहाने के लिए बुलाने आया होगा।
4: तेरा अंदाजा हमेशा की तरह आज भी गलत है मानव, ये तो पापा और विवेक भैया हैं।
5: अरे भाई किसका अंदाजा गलत है?
2: पापा, मौसम विभाग का और मेरा।
0: आप लोग तो बिल्कुल ठीक है जी। रुकिए मैं तौलिया लेकर आती हूँ, ये लीजिए।
6: मम्मी बाहर ना इतनी तेज आंधी थी, पहले तो हम एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, भाई पेड़ तो मानो चरमराने लगा, लगता था टूट कर गिर पड़ेगा। फिर हमने सोचा भाग लो घर ही चलते हैं।
5: अरे अब अपनी मम्मी को कहानी सुनाते रहोगे या पहले एक कप गर्मा गर्म चाय पी लें? क्यों वसुधा, अब चलो इस तूफान से मौसम कुछ तो ठंडा हुआ है ना।
0: सुनिए जी, दीदी के यहाँ वो सब तैयारियाँ ठीक चल रही है ना, शादी को तो कुछ ही दिन रह गए हैं।
6: पापा अगर शादी वाले दिन भी अचानक ऐसा मौसम हो गया तो?
5: अरे तो क्या, शामियाना वाटर प्रूफ लगाना पड़ेगा और क्या।
6: तब तो शामियाने का बजट और बढ़ जाएगा
2: और फूफा जी की जेब और हल्की हो जाएगी।
5: वैसे कहता तो ठीक है भाई, इस मौसम के मिजाज का हमारे मिजाज पर भी असर पड़ता है, यानी पड़ रहा है।
6: तभी तो हमारा दिल अब चाय और पकोड़े खाने को।
5: विवेक क्या बात, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मतलब मेरे पेट की बात छीन ली।
2: तो मम्मी कुछ बनाओ ना गर्मा गर्म।
1: मेरा भी दिल कर रहा है, चलो मैं आपकी मदद करती हूँ।
0: और कढ़ाई तो देना।
2: क्या हो रहा है?
1: ये लो मम्मी।
2: चूल्हे पर रखी है कढ़ाई, मम्मी और दीदी को अब नहीं लग रहे हैं गर्मी के चाटे, तभी तो वो बना रही है गर्मा गर्म पराठे।
4: काफिया तो है तेरा एकदम ठीक, पर अंदाजा नहीं है तेरा सटीक।
2: क्यों, क्या पराठे नहीं बन रहे?
0: क्या कढ़ाई में कोई पराठे बनाता है बुद्धू, मैं तो आलू की कचौरियाँ बना रही हूँ।
4: मानव तू जरूर मौसम वैज्ञानिक बनेगा।
6: अरे भाई कौन मौसम वैज्ञानिक बनेगा?
4: मानव।
6: क्यों?
4: क्योंकि इसका अंदाजा मौसम वैज्ञानिकों की तरह अक्सर गलत होता है।
0: मुझे भी ऐसे ही लगता है, चूल्हे पर कढ़ाई रखी है फिर भी कहता है पराठे बना रही हूँ।
6: अरे भाई इसमें मौसम वैज्ञानिकों का क्या दोष, मानव ने सभी बातों का अवलोकन गौर से नहीं किया और निष्कर्ष निकाल लिया तो अंदाजा तो गलत होगा ही ना।
0: ये गलतियाँ ना बाद में निकालना, लो पहले गर्म कचौरियाँ खाओ।
6: हाँ
1: भैया मुझे भी दो।
6: लेना मानव। अच्छा आजा मानव, पापा के साथ बैठ कर खाएंगे। मम्मी सृष्टि आप लोग भी जल्दी बना कर आ जाओ।
1: Thank you.
5: आता क्यों नहीं? एक कचौरी हाथ में लेकर क्या घुमा रहा है?
6: पापा मुझे पूरा यकीन है इसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है।
5: हाँ हो सकता है।
2: भैया मैं सोच रहा हूँ कि ये आलू की कचौरी का आकार अगर 2.5 गुना बढ़ जाए तो क्या ये पराठा नहीं हो जाएगा?
5: पराठा या कचौड़ी? अरे पहले तू खा ले मानव, फिर बता कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। खा ले, खा ले, पहले खा ले।
1: अरे मानव तू खाता क्यों नहीं रे? ये लो और कचौड़ियाँ।
5: अरे भाई ये तो कचौड़ी और पराठे के चक्कर में पड़ा है।
0: क्या चक्कर है भाई?
2: मम्मी अभी आप कह रही थी ना कि जब हवा की गति तेज हो जाती है तो आंधी तूफान बन जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कचौरी 2.5 गुना बढ़ जाए तो पराठा नहीं बन जाएगी।
0: नहीं, कचौरी कचौरी है और पराठा पराठा, क्योंकि दोनों को बनाने का ढंग अलग है और दोनों का स्वाद अलग है।
6: मानव तेरे दिमाग में क्या है साफ साफ बता देना, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं।
2: भैया आप तो रहने ही दो, मम्मी अगली बार जब बारिश होगी ना तो आप पराठे बनाना और वो भी आलू के।
0: बना दूंगी पराठे।
2: तो अगली बारिश कब होगी और कब मुझे पराठे मिलेंगे? भैया बताओ ना अगली बारिश कब होगी?
5: विवेक मानव मजाक मजाक में तुमसे पूछ रहा है कि आने वाले दिनों के मौसम का अंदाजा कैसे लगा?
1: हाँ पापा ये क्या, हम सभी आने वाले मौसम का हाल जानना चाहते हैं, क्योंकि मौसम का हर समय हमारी हर चीज पर कुछ ना कुछ असर जो होता है।
0: विवेक लगता है तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, सृष्टि भी कुछ गंभीर दिखाई दे रही है।
5: अरे क्यों ना हो वसुधा, मौसम और हमारा हर समय हर पल का वास्ता जो है, अगर आज हमें मौसम का पूर्वानुमान होता तो शायद हम घर से बाहर ही ना जाते, बाहर ना जाते तो भीगते नहीं।
0: और भीगते नहीं तो गर्मा गर्म कचौरियाँ और गर्म चाय नहीं मिलती।
5: ये बात ही नहीं।
6: देख मारो तू जानना चाहता है ना तो आज का अखबार उठा और मौसम वाला कॉलम देख, और देख उसमें क्या लिखा है।
2: अच्छा भैया अभी लाता हूँ।
5: खत्म करो ना ये चाय।
2: भैया इसमें तो कुछ आंकड़े लिखे हैं और एक मानचित्र भी है, और लिखा है कि मौसम में बदलाव नहीं आंकड़े हैं अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान और अपेक्षित आर्द्रता।
6: मानव मौसम को समझना तथा आने वाले समय के मौसम का पूर्वानुमान लगाना आज एक पूर्ण विज्ञान है, जिसे अंग्रेजी में मीटरोलॉजी यानी मौसम विज्ञान कहते हैं, और उससे जुड़े वैज्ञानिकों को मीटरोलॉजिस्ट यानी मौसम विज्ञानी।
2: अच्छा भैया एक बात बताओ, जब मौसम विभाग नहीं था और मौसम वैज्ञानिक भी नहीं थे तो लोग मौसम का अंदाजा कैसे लगाते थे?
5: गुड क्वेश्चन।
0: अरे मानव हमारे यहाँ कितनी ऐसी कहावतें मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं जो मौसम से संबंधित हैं। हमारी दादी उसी से अंदाजा लगाती थी।
1: हाँ मम्मी आपने एक दिन बताया था जब चिड़िया रेत में नहाए या चींटियां अपने अंडों को लेकर बाहर निकलने लगे तो समझो बारिश का मौसम निकट है।
6: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि, बिल्कुल ठीक। हमारे पूर्वज आकाश के रंग, हवा की दिशा, आकाश में बादलों की स्थिति और रंग देखकर मौसम की भविष्यवाणी करते थे। इस ज्ञान को लोगों ने कहावतों और मुहावरों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया।
5: जैसे मैंने तुम तक पहुंचाया।
2: तो क्या वो अनुमान ठीक होते थे?
6: कभी सही तो कभी गलत।
2: ऐसा क्यों?
6: तुम जानते ही हो मानव कि हमारे आसपास वायुमंडल है, उसमें जो बदलाव होते हैं वही हमारे मौसम को प्रभावित करते हैं।
1: और मैं ये भी जानती हूँ कि मौसम संबंधी प्रक्रिया केवल स्ट्रेटोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल में ही होती है।
2: दीदी तब तो हमें स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ही रहना चाहिए, वहाँ मौसम हमें कभी परेशान नहीं करेगा।
1: अरे बुद्धू तब सांस कैसे लेगा तू, वहाँ इतनी ऑक्सीजन कहाँ से आएगी?
6: हमारा वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है।
2: पर भैया मैंने तो सुना है कि धरती का वायुमंडल कई चादरों का बना हुआ है और हर चादर अलग अलग है, जैसे मेरे पलंग की चादर लाल तो दीदी की नीली।
6: हाँ मानव कुछ ऐसे ही समझो, पर हर चादर के गुण अलग अलग होते हैं।
2: ऐसा क्यों भैया?
6: मानव इसके लिए हमें गैसों के कुछ विशेष गुणों को समझना पड़ेगा।
1: जैसे गैसें दबाव डालती हैं, गर्म होकर फैलती हैं तो उनका घनत्व कम हो जाता है और वो ऊपर उठती हैं।
6: बिल्कुल ठीक है सृष्टि, ठीक उसी प्रकार वायुमंडल की निचली परत जो धरती के संपर्क में आती है वो गर्म हो जाती है और उसके अणु एक दूसरे को धकेलते हैं, इससे वो फैल जाते हैं और तब उनका घनत्व कम हो जाता है और तब वो परतें हल्की हो जाती हैं और तब उनके द्वारा डाले जाने वाला दबाव भी कम हो जाता है।
2: दबाव कम होने से क्या होगा?
4: तब तो आसपास की ठंडी हवा गर्म वायु को धकेलती होगी।
6: बिल्कुल ठीक सोचा सृष्टि, और गर्म वायु ऊपर उठ जाती है
4: और उसके स्थान पर ठंडी हवा आ जाती होगी।
2: दबाव कम तो ठंडी हवा यानी सुहाना मौसम।
6: अरे वाह माना, ऐसा ही कुछ कुछ वैज्ञानिक भी करते हैं। वो पूर्वानुमान कई कारकों के आधार पर लगाते हैं
4: और वो कारक हैं तापमान, हवा का दाब, दिशा तथा आर्द्रता यानी नमी।
2: पर भैया ये नमी कहाँ से आती है?
6: अरे मानव, धरती के तिहाई भाग में पानी ही तो है। सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर वायुमंडल में पहुँचता है।
2: अच्छा अब मैं समझ गया।
6: और मानव जानते हो, आज हमारे पास इन सभी कारकों को नापने के उपकरण हैं, जैसे थर्मोमीटर, एरोमीटर, अनीमोमीटर, यानी आंकड़े जितने सही और सटीक होंगे हमारे अनुमान उतने ही सही होंगे।
2: तो क्या हमारे मौसम वैज्ञानिक सही और सटीक आंकड़े इकट्ठे नहीं करते तो उनके अनुमान ठीक नहीं होते?
6: मानव इस सवाल का जवाब देना तो मुश्किल है।
5: अरे भाई कौन से सवाल का जवाब मुश्किल है,
6: आप ही बता दो।
4: अरे पापा याद आया, आपके मित्र है ना डॉक्टर कार।
6: हाँ?
4: वो भी तो मौसम वैज्ञानिक है।
2: वही मौसम भवन वाले ना दीदी?
4: हाँ हाँ वही मानव। अब पापा आप उनको फोन करो ना, हम उनसे मिलना चाहते हैं।
6: हाँ हाँ पापा, मैंने सुना है अब मौसम विभाग में एक नया सुपर कंप्यूटर आया है, मैं उसे देखना चाहता हूँ।
5: तुम लोग जाना चाहते हो?
4: हाँ पापा।
5: अरे तो मैं अभी फोन करके उससे कल शाम के लिए तुम सबके मिलने का समय फिक्स कर देता हूँ।

0: देख ये रहा मौसम केंद्र, और वो देख डॉक्टर कार हमारा इंतजार भी कर रहे हैं।
1: अरे आ जाओ बच्चों, कैसे हो विवेक, कैसे हो मानव, कैसी हो सृष्टि?
2: नमस्ते अंकल।
1: नमस्ते नमस्ते, आओ
3: दीदी। ये मौसम भवन है?
1: हाँ भाई, यही मौसम भवन है और ये हमारा दफ्तर है। आओ आओ भीतर चलें।
0: आई, आई।
3: अरे दीदी वो देखो वहाँ वो दो लोग ना गुब्बारे उड़ा रहे हैं, कितना बड़ा गुब्बारा है, कितना मजा आ रहा होगा ना इनको।
1: अरे भाई मानव, ये मजे के लिए नहीं है, ये तो उसे ऊपर के वायुमंडल का हालचाल जानने के लिए उड़ा रहे हैं।
3: ऊपर के वातावरण का हालचाल?
1: हाँ मानव, ये मौसम केंद्र है, हम यहाँ वायुमंडल से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करते हैं।
0: अंकल इन गुब्बारों में क्या है?
1: विवेक इनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं, जिनसे हम ऊपरी वायुमंडल का तापमान, दबाव, हवा की दिशा और नमी से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते हैं। हमारे देश में मौसम संबंधी आंकड़े 550 से अधिक केंद्रों पर इकट्ठा किए जाते हैं।
0: अच्छा,
3: तो क्या हर केंद्र से गुब्बारे भी छोड़े जाते हैं?
1: अरे नहीं नहीं, ऐसा केवल 36 केंद्रों से दिन में दो बार किया जाता है। विश्व के अन्य देशों में भी ऐसे केंद्र हैं, जिनसे हम आंकड़ों का आदान प्रदान करते हैं।
3: अंकल उस बाग में जो यंत्र लगा है वो रेन गॉज यानी वर्षा मापक यंत्र है ना?
1: बिल्कुल सही सृष्टि, और ये यहाँ बैरोमीटर है वायु के दाब के लिए, और ये हाइग्रोमीटर हवा में नमी के लिए,
3: और ये है थर्मामीटर तापमान नापने के लिए।
0: अंकल एनीमोमीटर भी तो होगा हवा की गति नापने के लिए?
1: हाँ हाँ विवेक, वो देखो वो रहा, और ये जो जोकर की टोपी जैसा ये है ना, ये वायु दिशा सूचक है।
3: तो आप यहाँ केवल आंकड़े इकट्ठा करते हैं?
1: हाँ मानव, हमारे पास मौसम संबंधी पिछले 100 वर्षों से अधिक के आंकड़े हैं।
3: पर अंकल आप इन आंकड़ों का करते क्या हो?
1: अरे मानव यही तो हमारा कच्चा माल है मौसम का पूर्वानुमान लगाने का।
3: कच्चा माल?
1: बिल्कुल भाई, मुझे आपके पिताजी ने बताया था कि आप लोग कल बेमौसम की बरसात से परेशान हो गए थे, और आज मौसम केंद्र में ये जानने आए हैं कि आने वाले मौसम का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है।
4: हाँ अंकल।
1: तो चलो फिर भीतर मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ पर डॉक्टर प्रशांत माली भी आपसे मिलने को उत्सुक हैं।
4: चलो
0: चलो
1: चलो, आओ बच्चों आओ। ये है डॉक्टर प्रशांत, और डॉक्टर प्रशांत ये मेरे मित्र सूर्य प्रकाश जी के बच्चे हैं। ये है विवेक, ये सृष्टि, और ये मानव।
3: नमस्ते अंकल।
5: नमस्ते नमस्ते भाई। भाई मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं।
1: वैसे बच्चों एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मौसम के पूर्वानुमान लगाने का तरीका आज भी लगभग वैसा ही है जैसा कि पहले था।
5: हाँ, आज केवल अंतर इतना है कि हमारे पास आंकड़े एकत्र करने के सही उपकरण व तकनीक है, जिससे पूर्वानुमान अधिक सटीक प्राप्त होते हैं।
1: पर मौसम का पूर्वानुमान लगाना आज भी लगभग टेढ़ी खीर है, क्योंकि मौसम को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले सभी कारक क्या हैं और वो आपस में कैसे और क्या क्रियाएं और अभिक्रियाएं करते हैं, इसकी पूर्ण जानकारी अभी हमारे पास नहीं।
0: तो अंकल जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती जाएगी और हमारी तकनीकें सुधरती जाएंगी, हमारे पूर्वानुमान सटीक होते जाएंगे, है ना?
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने विवेक। जैसे प्राचीन काल से मध्य काल तक मौसम के पूर्वानुमान के लिए लोग संतों और महात्माओं से पूछते थे, क्योंकि मौसम का नियंत्रण व उसमें आपस में होने वाली क्रियाओं से वे अनजान थे।
3: और आज वही कार्य मौसम वैज्ञानिक करते हैं।
1: हाँ मानव, परंतु आज हम मौसम का पूर्वानुमान वैज्ञानिक तरीके से लगाते हैं, हम भौतिकी व रसायन विज्ञान के कई सिद्धांतों का भी उपयोग करते हैं।
5: और बच्चों मौसम को समझने के लिए भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग करने वाले पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे एडमंड हेली।
0: अंकल वही हेली जिन्होंने उस धूमकेतु की खोज की थी जो हर 86 वर्षों में पृथ्वी के निकट आता है?
5: हाँ विवेक वही हेली, और पता है वो न्यूटन के भी अच्छे मित्र थे।
1: भाई बच्चों जैसे जैसे वायुमंडल के बारे में हमारी जानकारी बढ़ रही है, हमारे तरीकों में भी बदलाव आता जा रहा है।
0: तभी अंकल आज हम मौसम के आंकड़े न केवल पृथ्वी की सतह से बल्कि वायुमंडल के भिन्न भिन्न स्तरों से भी लेते हैं।
5: और आंकड़ों के लिए हम समुद्री जहाजों, वायुयानों और रॉकेटों का भी उपयोग करते हैं।
3: लेकिन अंकल पृथ्वी का वायुमंडल तो एक है, वो तो देश की राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानता। मुझे लगता है मौसम का सही पूर्वानुमान हम तभी लगा सकते हैं जब हमें समुचित वायुमंडल के आंकड़े प्राप्त हों।
1: बिल्कुल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। असल में हमारी ये समस्या आज दूर संवेदी तकनीक यानी रिमोट सेंसिंग द्वारा हल हो गई है। आज कई उपग्रह जिनमें पोलर सैटेलाइट यानी ध्रुवीय उपग्रह और जियोस्टेशनरी यानी भूस्थिर उपग्रह शामिल हैं, उनसे हमें पृथ्वी के एक विशाल क्षेत्र के आंकड़े प्राप्त होते हैं।
0: अच्छा
3: अंकल, आपकी टेबल पे ये इतने सारे मानचित्र, ये क्या है? हाँ अंकल, ऐसे मानचित्र तो मौसम का हाल बताने वाले कार्यक्रम में अक्सर दिखाई देते हैं।
1: मानव और सृष्टि, ये सिनॉप्टिक मानचित्र हैं। दिन के एक निश्चित समय में विभिन्न केंद्रों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और वो एक विशेष केंद्र को भेज दिए जाते हैं।
5: फिर वहाँ पर

0: उनको मानचित्र पर दर्शाया जाता है। भारत में 550 केंद्रों पर आंकड़े एकत्र होते हैं।
1: अच्छा, तब तो अंकल जैसे ही एक विशेष समय पर लिए गए आंकड़ों को मानचित्र पर दर्शाया जाता होगा, तुरंत हमें पूरे देश के मौसम का पता चल जाता होगा।
2: बिल्कुल। इतना ही नहीं, इन आंकड़ों के गहन अवलोकन तथा विश्लेषण से पिछले आंकड़ों व अनुभवों के आधार पर आने वाले मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। इन आंकड़ों को मानचित्र में मानक संकेतों द्वारा दिखाया जाता है।
3: ये मानक कौन निर्धारित करता है?
0: ये मानक निर्धारित करता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही संगठन आंकड़े एकत्र करने के उपकरणों व तरीकों आदि के मानक निर्धारित करता है।
1: अच्छा अंकल, जब इन सिनॉप्टिक मानचित्रों का विश्लेषण किया जाता है तो उससे हमें पूरे वायुमंडल का हाल तो मिल जाता है, पर आने वाले मौसम का पूर्वानुमान तो आकलन करने वाले वैज्ञानिकों के पूर्व अनुभव और उनकी कुशलता पर ही निर्भर करता होगा। उन्हें तो बहुत सारे सांख्यिकीय सूत्रों और समीकरणों को हल करना पड़ता होगा।
3: भैया, तब तो वो व्यक्ति गणित में बहुत होशियार होगा, है ना?
2: भाई, ये आंकड़े इतने अधिक होते हैं कि कई लोग लगातार दिन रात काम करें तो भी इनके सही नतीजे निकाल पाना संभव नहीं होगा।
4: तभी आपको सुपर कंप्यूटर की सहायता लेनी पड़ती है।
2: तुमने बिल्कुल सही कहा सृष्टि।
1: अंकल, क्या आज भी मौसम का पूर्वानुमान लगाना वैज्ञानिकों के कौशल और अनुभव पर ही निर्भर करता है?
0: नहीं भाई, आज तो मौसम का पूर्वानुमान लगाने के दो मुख्य तरीके हैं।
4: अंकल, पहला तो शायद वही, यानी जलवायु के कारकों, पिछले अनुभवों पर आधारित अध्ययन और उसका सांख्यिकीय विश्लेषण। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल यानी सांख्यिकीय मॉडलों द्वारा किया जाता है, है ना?
2: शाबाश सृष्टि। और दूसरा है वायुमंडल के सामान्य संचरण मॉडल्स।
3: ये क्या है अंकल?
2: भाई देखो, हमारा ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और ये भौतिकी के सभी नियमों का पालन करता है, जैसे गति के नियम, ऊर्जा व द्रव्य के संरक्षण आदि के सिद्धांत।
1: अंकल, कहीं आप गणितीय मॉडल की बात तो नहीं कर रहे जो वायुमंडल में घट रही सभी प्राकृतिक घटनाओं को आधार मानकर तैयार किए जाते हैं?
2: बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक समझे विवेक। इसे अंग्रेजी में न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन विधि कहा जाता है।
0: अच्छा। या यूं कहें कि ये मॉडल मुख्यतः वायुमंडल के व्यवहार से संबंधित नियमों और अभिक्रियाओं का एक समूह है।
2: देखो भाई, इन सभी सिद्धांतों और उनकी आपसी परस्पर क्रियाओं व संबंधों को गणितीय सूत्रों और समीकरणों में बदल दिया जाता है, फिर विभिन्न कारकों का मान रखकर उनको सुलझाया जाता है। जैसे पहले आंकड़े क्या थे और अभी के क्या हैं और आने वाले समय में क्या होंगे आदि। इन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आने वाले समय में वायुमंडल कैसे आचरण करेगा।
3: तब तो मेरे पास भी अगर सभी आंकड़े हो तो इस मॉडल के आधार पर और सुपर कंप्यूटर की सहायता से मैं भी मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता हूँ।
2: मानव, ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वायुमंडल एक गतिशील इकाई है और फिर वायुमंडल को प्रभावित करने वाले सभी कारकों और उनकी आपसी प्रक्रिया का हमें पूरी तरह ज्ञान भी नहीं है।
0: दूसरे, हमारे पूर्वानुमान लगाने के सभी मॉडल कई मान्यताओं पर आधारित हैं। जैसे किसी कारक और उसके प्रभाव की गणना करके जो गुणांक निकला है वो सार्थक होगा, परंतु वायुमंडल गतिशील इकाई है, उसमें कब, क्या, किस कारण से बदलाव आ जाए क्या पता।
1: अंकल, तब तो ये कार्य बहुत कठिन होता होगा।
0: हाँ विवेक, परंतु इन मॉडलों से लघु अवधि के यानी आने वाले 48 घंटों के मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है वो लगभग सही होता है।
4: यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा और वायुमंडल कैसे आचरण करेगा उसी के अनुपात में आने वाले पूर्वानुमान से ठीक ना होने की संभावना बढ़ती जाएगी।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने सृष्टि। आज मौसम वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एक जटिल गतिशील इकाई वाले वायुमंडल को सही रूप में कैसे समझा जाए।
0: और तभी तो इन मॉडलों के आधार पर प्राप्त अगले 48 घंटों से अधिक के पूर्व सूचना को हम अनुमान कहते हैं।
1: अच्छा, तब तो अंकल मौसम की मध्यम अवधि जिसमें 3 हफ्ते की सूचना दी जाती है उसका पूर्वानुमान सटीकता से लगाना तो अब भी कठिन काम है।
2: बिल्कुल सही कहा विवेक। लघु अवधि के पूर्वानुमान विस्तार से बनाए जाते हैं, वैसे मध्यम अवधि में पूर्वानुमान नहीं बताए जाते। ये काम आज भी अंधेरी रात में काले कौवे को पकड़ने के समान है।
3: फिर अंकल, हम ये सारी मेहनत क्यों करते हैं?
2: ये भी सही सवाल है मानव भाई। ये पूर्वानुमान सही भी तो उतरते हैं, कभी कभी अनुमान गलत हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मौसम का पूर्वानुमान लगाया ही ना जाए।
0: आज पूरे विश्व में लगभग सभी देशों के मौसम वैज्ञानिक लघु व मध्यम अवधि के पूर्वानुमान लगाने के अलावा आगामी वर्ष में होने वाली वर्षा, गर्मी और हिमपात का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। ये आने वाले मौसम का दीर्घकालीन अनुमान लगाना होता है, जैसे हम आने वाले मानसून का पूरा अनुमान लगाते हैं।
3: अच्छा। अंकल, हमारे देश में तो खेती मानसून पर ही निर्भर करती है। अगर उसका पूर्वानुमान लगा लिया जाए तो किसान फसलों को लगाने की योजना पहले से ही तैयार कर सकते हैं।
1: अंकल, हमारे देश में इस दीर्घ अवधि के मौसम का पूर्वानुमान मतलब कि आने वाले मानसून की भविष्यवाणी की जाती है।
2: बिल्कुल सही विवेक। सन 1986 से हर वर्ष मानसून का दीर्घकालीन पूर्वानुमान लगाया जाता है और खुशी की बात यह है कि अधिकतर ये परिणाम खरे उतरते हैं। इसके लिए हम आज एक 16 पैरामीटरों पर आधारित एक नए मॉडल का उपयोग कर रहे हैं।
1: अच्छा।
0: और इस मॉडल के अनुसार मानसून के पूर्वानुमान लगभग ठीक ही साबित हुए हैं।
1: अच्छा।
3: अंकल, आपका काम सचमुच बहुत कठिन है। मैं न केवल हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व के मौसम वैज्ञानिकों को सलाम करती हूँ जो दिन रात मेहनत करके हमें आने वाले मौसम के बारे में जानकारी देते हैं।
1: हाँ सृष्टि, सोचो ये मौसम की जानकारी हमारे देश के तटीय क्षेत्रों के लिए कितनी आवश्यक है।
3: तो क्या आने वाले समुद्री तूफान या चक्रवात की जानकारी भी हमारा मौसम विभाग ही देता है?
2: बिल्कुल मानव बेटा।
3: तब तो मैं भी अपने सभी वैज्ञानिकों को सलाम करता हूँ।
5: और मैं भी।
2: वाह क्या बात है।
5: रसोई की खिड़की से कितनी अच्छी सुगंध आ रही है।
3: ये तो इमली की महक है। और हाँ, कल रात को तो मम्मी ने चावल और उड़द की दाल भिगोई थी, तब तो जरूर आज सांबर और डोसा बन रहा है।
6: हाँ भाई, डोसा ही बन रहा है।
5: देख मानव, आज तेरा अनुमान बिल्कुल ठीक निकला।
3: आज इसका अनुमान बिल्कुल ठीक इसलिए रहा क्योंकि इसने अच्छी तरह सारी जानकारियों को तोला और परखा।
7: अरे भाई, किसका अनुमान सही है? मेरा पूर्वानुमान है कि तुम सब के सब भूखे हो।
3: आपको कैसे पता?
6: ये तो साफ साफ तुम्हारे चेहरों पर लिखा है।
3: मम्मी, तो क्या आप भी चेहरे पढ़कर अनुमान लगा सकती हो?
6: हाँ बच्चों, मौसम का अंदाजा तो मैं नहीं लगा सकती, पर तुम्हारे चेहरे देखकर तुम्हारी भूख का अंदाजा जरूर लगा सकती हो।
8: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 29वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम की भविष्यवाणी।
9: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जाने। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: तीन तारा मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार।
0: बाय बाय।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Oh, Sharda!

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9393
3: 777-0 सीट्स आर लिमिटेड। हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937700. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
2: रिपोर्टर तारा, और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
3: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर, और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
4: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
3: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
4: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
3: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं, और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
4: ये बात है, तो हम बच्चे भी मच्छरों से ठिशुम ठिशुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
3: क्या कहा तुमने?
4: Kids want to know, मिस मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
3: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी, और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
4: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: अभी को राजमान आऊंगी मैं वहां वहां।
1: चलो दोस्तों बन जाओ टीम तारा, जहां भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
2: टीम तारा है भैया।
3: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
1: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
2: गुड बाय।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं।

विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो साधन 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक,
2: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
1: अरे वाह। नंबर दो,
3: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
1: शाबाश। नंबर तीन,
2: बंद करो खुले में जाना, घर घर शौचालय बनवाना।
1: बढ़िया। रोल नंबर चार,
4: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
1: अरे वाह। तुम
2: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
1: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
5: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए।

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।
0: Audio credits performed by Banjare and Simran Kaur, written by Banjare and Simran Kaur, composed by Banjare, music production by Ronnie. So let's enjoy it. All your Surushad 90.8 FM.

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा
2: 90.8 एफएम। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स, और इसको धुन से सजाया है एआर रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार। ऑल योर सुनो शारदा 90.8 एफएम इंकलाबी जिद्दी।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.

0: फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
1: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हे गाइस व्हाट्सअप, क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Neil DeMello, do you take Carol Vaz as your lawfully wedded wife?
6: I do.

0: Do you take Carol Vaz as your lawfully wedded wife?
1: I do.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
2: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
1: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं।
2: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निशुल्क पहुंचाएगी।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
1: शिशु की सही देखभाल से
2: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।
2: ओले ओले ओले, शोनक। हेलो, कौन?
3: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
4: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
3: जल्द मिलते हैं।
2: हेलो हेलो हेलो,
5: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
6: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: डेंगू और मलेरिया का दी एंड। दिमागी बुखार का दी एंड। ये
2: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
1: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
2: ओह,

0: मच्छरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओकेरा के तुरंत साफ करे नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
3: और आसपास कहूं भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाए।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।